सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की 29वीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे शुरू के घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर

0: 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टणम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती से संबंधित। प्राकृतिक खेती पद्धति से फसलों को उगाने में किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों, कीटनाशकों इत्यादि के प्रयोग के बिना सफल एवं सतत खेती किसान कर सकते हैं और ये जहर मुक्त खाद्यान्न का उत्पादन भी आप कर सकते हैं। इस तरह वह खेती में उत्पादन की लागत को बहुत कम या शून्य भी कर सकते हैं, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही समाज के अन्नदाता के रूप में स्वस्थ भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाकर स्वस्थ भारत समृद्धि परिवेश के स्वप्न को भी आप साकार कर सकते हैं और इसमें अपनी भूमिका भी अदा कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती क्यों और इसके लाभ क्या हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बाजार पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। खेती में आवश्यक सभी इनपुट या तो गांव में उपलब्ध हैं या फिर घर पे ही तैयार किए जा सकते हैं। रसायन आधारित तत्वों का खेती में प्रयोग न करना पर्यावरण, मिट्टी और जल प्रदूषण पर नियंत्रण है। यह प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों का संरक्षित भी करता है। मृदा और उर्वरता

मिट्टी के जैविक पदार्थ और मिट्टी में कार्बन की बहाली करना। इस पद्धति से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और स्वदेशी गाय के गोबर और मूत्र आधारित सूत्र की प्राकृतिक खेती की कुंजी भी है। यह कीट प्रबंधन के लिए वनस्पतियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से खेती की लागत को कम किया जा सकता है। यह स्थानीय बीजों के उपयोग को बढ़ावा देती है जो स्थानीय वातावरण के अनुकूल है। अंतर फसल और बहुफसल। कम अवधि वाली अंतर फसल में होने वाली आय मुख्य फसल के लिए किसानों को कार्यशील पूंजी प्रदान करती है और किसानों की आय को ये बढ़ा सकती है। बहुफसल कृषि मॉडल में पेड़ों को शामिल करने से साल भर आय मिलने के साथ जोखिम भी कम हो जाता है। इसमें निरंतर हरा आवरण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, इसमें आच्छादन होता है और पानी को नुकसान भी कम होता है। प्राकृतिक खेती से कम पानी की जरूरत, आच्छादन और वापसा जल उपयोग क्षमता को बढ़ाता है तथा भू जल आवश्यकताओं को कम करता है। प्राकृतिक खेती के तहत फसलें सूखे के दौरान भी लंबे समय तक बेहतर तरीके से खड़ी रहती है और भारी बारिश का सामना भी कर सकती है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक खेती पद्धति सबसे अधिक जलवायु हितैषी भी मानी जाती है। प्राकृतिक खेती के लिए जो खाद बनते हैं वो 5 स्तंभ है। जैसे क्या है कि बीजामृत, ये देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार होने वाले अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल जिससे बीजों को संस्कारित किया जा सकता है। जीवामृत, अमृत करोड़ सूक्ष्म जीवों का उत्तम जामुन जिसे देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार किया जाता है। आच्छादन, फसलों के बचे हुए अवशेषों को मिट्टी के ऊपर ऊपरी परत पर बिछाकर पानी को वापिस होने से रोकता है और मिट्टी में ह्यूमन का निर्माण भी करता है। अब क्या है, जैसे क्या है, बीजामृत बना रहे हैं तो इसके लिए है पानी, गोमूत्र, गोबर, अनबुझा चूना, खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी। इसकी मात्रा अगर आप समझ लें तो 20 लीटर पानी ले लें, 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलोग्राम गोबर, 50 ग्राम अनबुझा चूना, 50 ग्राम खेत के मेड़ या जंगल की मिट्टी। इन सबों को मिलाकर सामग्रियों को अच्छी तरह से ड्रम में घोलें। इस घोल को 24 घंटे बोरी से ढककर छांव में रखने के बाद बीजों को संस्कारित करें। ध्यान रहे, इस दौरान इस घोल को सुबह शाम 2-2 मिनट घोलना होता है। बुआई के 24 घंटे पहले शोधन करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है प्राकृतिक खाद भी बना सकते हैं। प्राकृतिक खेती करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है, इसलिए प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। तो इसी चर्चा के साथ ही हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने दोस्त संजय सिन्हा को आगे दीजिए। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बाल पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब सुनते हैं हमारा आज का चिंतन। शीर्षक है संतोष ही सच्चा धन है। मानव अपने जीवन में सदैव संघर्ष करता रहता है। संघर्ष से ही उसका जीवन आगे चलकर सफल हो पाता है। यह संघर्ष किसी भी वस्तु अथवा धन के लिए हो सकता है। कई बार हम धन कमाने की इच्छा में इतने लीन हो जाते हैं कि हम किसी भी तरह के संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाते। बेशक हम अपने जीवन में धनी बन जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे उस धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस समय हमें चाहिए होती है चित्र शांति अर्थात मन का संतोष। मन का संतोष ही हमारे लिए सच्ची पूंजी है, क्योंकि मन शांत होगा और संतुष्ट होगा तभी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। और मन संतुष्ट नहीं होगा तो हम चाहे जितना भी धन कमा लें, हमें संतोष और सुख नहीं मिल सकेगा। यदि हम अपने मन को शांत करके दो रोटी भी प्याज के साथ खाएं तो अभी हमें अच्छी लगेगी, परंतु हमारा मन शांत नहीं है तो फिर हम चाहे कितने भी बड़े भोजनालय में भोजन ग्रहण करें तब भी हमें संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि संतोष ही सच्चा

संतोष रूपी धन के सामने अन्य सभी प्रकार के धन धूल के समान व्यर्थ हैं। मनुष्य के पास अनेक प्रकार के धन हो सकते हैं, सुख सुविधाओं के रूप में, भोग विलास की सामग्रियों के रूप में या पैसे के रूप में, परंतु इनमें से किसी भी प्रकार का धन मनुष्य को सच्चा सुख नहीं देता। इन सबको विशेष रूप से धन को प्राप्त करने पर तृप्ति नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। कामना कभी कम नहीं होती, चंचल मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ईर्ष्या, लालसा और कामना की भावनाओं के कारण मनुष्य सदा असंतुष्ट रहता है और नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। परंतु जब मनुष्य संतोष रूपी धन प्राप्त कर लेता है, तब उसे अन्य किसी प्रकार के धन की कामना नहीं रहती। जब संतोष आ जाता है तो सारी इच्छाएं और लोभ स्वयं समाप्त हो जाते हैं। संतोष आ जाने से ऐसी आनंदमयी दशा हो जाती है जिसमें न ईर्ष्या होती है, न द्वेष, न असंतोष होता है, न शांति, न लोभ होता है, न लालच। जीवन बस सुखी, संतुष्ट, चिंता रहित हो, आनंद से भरपूर हो जाता है। और संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाने पर अन्य सभी प्रकार के धन निरर्थक प्रतीत होने लगते हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के ही डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में हम सबसे पहले याद करते हैं भगवान श्री हनुमान जी को।

0: 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में डायबिटिक होने का क्या कारण मानते हैं?
2: वर्तमान समय में डायबिटीज होने का मुख्य कारण जो है आजकल की जीवन शैली। आजकल का जो जीवन शैली है वो बड़ा ही पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही बदल गया है। पहले के लोग जो है समय पर खाना पीना करते थे, समय पर सोते थे, उतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। आजकल हर व्यक्ति जो है स्ट्रेस में जी रहे हैं और रात में

0: को दिन की तरह काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के होड़ में जो है सो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं है, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं खा रहे हैं, कभी शाम खा रहे हैं, कभी सुबह खा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं, उसके साथ नशा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सब कारण डायबिटीज़ वगैरह बहुत फैल रहा है। और डायबिटीज़ हर घर में देखिएगा तो एक ना दो जन इससे पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस उसको कहते हैं जिसको कि उसको एक्चुअल में हिंदी में मूत्रमेह बोला जाता है, जिसमें कि जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उसमें शुगर का कोई शिकायत नहीं होता, लेकिन उसको पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, बहुमूत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति जो है सो रात में कई बार उठ उठ के बाथरूम जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, इवन बेड वेटिंग भी आता है, बच्चों को बेड वेटिंग हो जाता है, और यही सब जो है सो पॉलीयूरिया का कारण है। अगर पैथोलॉजिकल जांच कराएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बढ़ावा मिलेगा, जो कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1015 लेकर के 1030 तक के बीच में होता है, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको उससे बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, इसमें डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, शरीर में कमजोरी आती जाती है। और इसका होने का मुख्य कारण क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीशन में कमी आता है, चाहे उसके लिए बहुत सा फैक्टर है, जैसे मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, सार्कोमा है, और माथे में सिर में चोट लगा हो, मतलब सर्जरी हुआ हो सिर में, ये सब कई कारण है जिसके वजह से वहाँ जो ट्रैक्ट बना हुआ उसको हार्मोन को ले जाने के लिए उसमें डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो हार्मोन वहाँ जा नहीं पाता है या कम जा पाता है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिलने से उस चूँकि कब पेशाब जाना है नहीं जाना है उस चीज़ पर कंट्रोल करता है, जो कि उस चीज़ पर जब वो हार्मोन नहीं पहुंचने से वो पेशाब की मात्रा जो बढ़ जाती है, और इस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस जिनको होता है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस का रोगी कहलाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपना इलाज शुरू कर दें।
0: डायबिटीज़ इंसिपिडस का जो लक्षण है, जिसमें प्यास अधिक लगता है, मुँह सूखता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये सारे उसके लक्षण हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जांच करावेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका बढ़ावा मिलेगा। ये इंसिपिडस जिसको कि मूत्र में है उसको कहते हैं, और जो डायबिटीज़ जिसको कि लोग जनरली मानते हैं जो जिसको को उसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस को मधुमेह बोलते हैं, जिसमें शर्करा के जाने की शिकायत रहती है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, और इसका मुख्य कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी। मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी क्या है, इस सेंस में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो बसा फैट जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सही से उसका चयापचन नहीं हो पाता है, उसको डिसइंटीग्रेशन होने में दिक्कत होता है, उसमें जो केमिकल कुछ चेंजेज आ जाता है, जिस वजह से अंतिम जो उसका रूप है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिस वजह से ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ता है, और इसमें बहुत हद तक जो है सो पैंक्रियास से रिलेटेड जो लैंगरहंस ऑफ आइलेट है, जहाँ उस सेल है वहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है, और इंसुलिन हो सकता है कि या तो निर्माण होता नहीं है या कम होता है या निकलता नहीं, जो भी रीज़न है इंसुलिन उसके लिए उत्तरदायी होता है। इंसुलिन अगर जो है सो सही मात्रा में आता है तब तो उस ब्लड शुगर सही नॉर्मल रहता है, अगर इंसुलिन नहीं रहा तो ब्लड शुगर आपको जो है सो बढ़ावा मिलेगा। ब्लड शुगर अगर जांच कराइएगा तो खाना खाने के बाद 149 से ऊपर दिखेगा, 180 तक तो मान लीजिए चलता है, 180 से ऊपर दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि हम शुगर से ग्रसित है।
1: डायबिटिक होने के उपरांत किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, अपने जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, खान पान में हम किन किन चीज़ों का सेवन करें और किन किन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं?
0: वैसे तो यह फैटल नहीं है डायबिटीज़ को अगर

0: सलीके से अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको खान पियान में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिस तरह से बॉडी वेट के अनुसार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम 150 ग्राम होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा 70 ग्राम और फैट की मात्रा 60 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, जो मिला जुला के 1400 कैलोरी लगभग उनको मिलना चाहिए। इससे उनका वो मेंटेन रहेगा खान पियान के लिए। दूसरी बात, नशा वगैरह कुछ करते हैं उसको छोड़ दें, सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह किया करें, मॉर्निंग वॉकिंग किया करें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेकर कोई काम ना करें, घर में किसी तरह कोई तनाव ना लें, तो इस सब बहुत हद तक हम बचे रहेंगे। और इसका जो जरूरी मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो रेगुलर लेते रहें। हाँ, डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें, अपने से कोई दवा ना करें। डायबिटीज़ का कोई विशेष कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, शरीर में वजन घटता चला जाना, मस्कुलर वेस्टिंग हो जाना, ये सब कई कारण है। और भी इसमें लक्षण कुछ दिखता है, जैसे आपका स्त्रियों में प्रूराइटिस भाल्वा उसको बोलते हैं, काफ़ी इचिंग होता है पेशाब के रास्ते में, और स्किन डिजीज वगैरह हुआ और वाल्वाइटिस हुआ। जेंट्स में बलानाइटिस इसको बोलते हैं, लिंग मुंड में सूजन हो जाना, वहाँ स्किन का एरप्शन होना, ये सब कई कारण हैं जो डायबिटीज़ के लक्षण हमें दिखाते हैं।
1: जब डायबिटीज से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो वो मीठा खाना छोड़ देते हैं, मीठा से बहुत दूरियाँ बना लेते हैं, तो कितना मीठा खाएं, चाय में शक्कर की मात्रा वो नहीं लेते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि डायबिटिक हो भी जाता है तो अपने आप को मेंटेन करते हैं और सभी चीज़ें खाते रहते हैं, तो कौन कौन से फल का सेवन किया जाए, कौन कौन से सब्जियों का सेवन किया जाए, और भात दाल के अलावा और अपने भोजन में शामिल किया जाए ताकि हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बिल्कुल संतुलित रहे।
0: सब्जियों में हरा साग सब्जी, पालक साग हुआ, मेथी हुआ, ये सब जो है इस्तेमाल करें, और फल में खट्टे फल का इस्तेमाल करें, जैसे संतरा हुआ, ये सब जो है सब मीठे फल का इस्तेमाल ना करें
1: जी।
0: और खाने के लिए चना फुला के या भूंज के भुंजा के रूप में लें, ये बहुत ही अच्छा है। सत्तू के रूप में लें, सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चावल की मात्रा को कम करें, आटा जो लेते हैं गेहूं की उसमें मिक्स आटा मिले, जैसे ज्वार माजरा ये सब की चना के आटा मिला करके रोटियाँ बनाएं, और चोकर सहित रोटियां बनाया खाएं, वैसी नहीं कि चोकर निकाल के मैदे वाला आटा खाएं, तो वो नहीं खाना चाहिए। और खाने जो है सो ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है, पानी की सेवन ज़्यादा करना है और कम कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रविंद्र कुमार अम्बष्ट से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता, विषय था डायबिटीज कारण और उसका निदान। बातचीत कर रहे थे संजू कुमार लाल। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक

आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमेरिका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस प्रोग्राम में आप सुनिएगा डॉक्टर अनिता सिंह से कजरी गायन। सात बजकर 45 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेगा कार्यक्रम कानून की बात। सुबह के 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का समय रहता है 8:30, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे गीत गुंजन 8:45 पर, और सुबह के 9 आप सुनिएगा खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा नियमित प्रोग्राम जोहार पलामू।

नौबाज करतीश में पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। दिन के ठीक 10 बजे आप सुनी गए हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से। दस बजकर 10 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम।

दोपहर में 1 बजे हैं, मैं आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 1:05 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनिएगा दोपहर में 1:10 से हमारे आकाशवाणी कराची केंद्र से, और समाचारों के बाद पुनः आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। लौटेंगे स्टूडियो 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। पांच बजकर 35 मिनट पर आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 6 बजे हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6:30 को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा ग्रामीण सभा। 6:30 से शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार, और जिले में आजकल 7:10 से 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे गीत गजलों का प्रोग्राम स्वरंजलि। कलाकार होंगे मेहंदी हसन। विज्ञान जगत कार्यक्रम का समय रहता है 7:45। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आप सुनिएगा चित्रपट से रात्रि 8 बजे, और इंद्रधनुष क्षेत्रीय फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम हम लेकर आएंगे 8:30 से। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे, और उर्दू में खबरें 9:15 से। 9:30 पर हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे हम आपको सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026। डेली हाईलाइट ये आप सुनते हैं रात्रि 10 बजे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करते हैं रात्रि 11:10 पर।

0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिता सेन से शास्त्रीय गायन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमसे दिन प्रतिदिन के कार्य से जुड़ा हुआ है और ये है पॉश एक्ट। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड हाई कोर्ट की एडवोकेट रूबी पांडे जी, जो कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं और साथ ही मेडिएटर भी हैं। मैडम नमस्कार, आकाशवाणी के हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को यही बता दें कि पॉश एक्ट है क्या, क्योंकि इसके बारे में सुनते तो सभी हैं लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए।
2: ये पॉश एक्ट एक्चुअली 2013 में एक्ट बनाया गया। ये एक्ट सिर्फ महिला का सुरक्षा के लिए, ताकि उसको वर्क प्लेस में किसी भी द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जाए। जैसे उसको आप बोला जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिसको कि फुल फॉर्म कहा जाएगा, इसको पॉश एक्ट 2013 में लाया गया। ये एक्ट पहले 2013 से पहले ये एक्ट नहीं था। एक सिंपल आईपीसी के थ्रू यदि कोई भी महिला उत्पीड़न हुई तो उसको थ्रू आईपीसी के थ्रू इसको हम लोग केसेस मिलाते थे। बट जब से 2013 में ये पॉश एक्ट आया तो महिला को एक बहुत बड़ा सुरक्षा मिला, ताकि वो कहीं पे भी अपना कार्यस्थल में सुरक्षा के थ्रू अपना कार्य को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसकी आवश्यकता थी और इस तरह की घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि भी हो रही थी और बड़ा एक संजीदा विषय है, बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, क्योंकि पॉश एक्ट के तहत जैसे महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करें, तो आप क्या ये बता सकती हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पॉश एक्ट के तहत आती हैं, जो नहीं करना चाहिए पुरुषों को?
2: जैसे बहुत बार पुरुष क्या करते हैं, पहले उसके पहले हम एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहते हैं ये एक्चुअली पॉश एक्ट आया क्या, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल्स बताएंगे उनके बारे में। ये एक्ट आपका जो महिला के साथ में हुआ था 1993 में, जो एक भावरी देवी करके एक महिला थी, शी इज अ सोशल वर्कर, वो अपना गांव में रहती थी, वहाँ पे देखती थी कि कोई भी बाल विवाह ना हो छोटे, या किसी के डाउरी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इन दैट केसेस में एक 9 मंथ्स की एक लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अटेम्प्ट तो लिया कि ठीक है चलो शादी तो एक दिन के लिए रुक गई, चूंकि वो अपर कास्ट के थे लोग सब रुक गई, लेकिन दबंग थे। सेकेंड डे क्या हुआ, शादी हुआ, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन करने लगा, क्योंकि ये एक कुम्हार टाइप की जो महिला थी भावरी देवी, और उसके साथ उसको अत्याचार किया गया, गैंग रेप किया गया। तो उसको ये बहुत जगह शेल्टर ली, उसको पुलिस से उसको कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिला, मेडिकल में उसको फैसिलिटीज नहीं मिला, इवन सेशन कोर्ट्स में भी उसको अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया गया। तो एक 1997 में एक विशाखा गाइडलाइंस, ये लोग सब PIL के थ्रू फाइल किए हैं, NGOs जो मिलके, उसके थ्रू ये गाइडलाइंस के अनुसार ये पॉश एक्ट का स्थापना हुआ 2013 में। इसमें एक आपने जो क्वेश्चंस पूछा था कि क्या क्या महिला के साथ हो तो वो इस शेल्टर ले सकती, यदि मान लीजिए महिला कार्यस्थल में है, उसको एक वल्गर वर्ड्स बोला जा रहा है, या कोई भी वीडियोज उसको दिखाया जा रहा है, या कभी कोई भी उसको उसको एश्योरेंस दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो तो हम तुमको प्रमोशन देंगे, या चलते चलते उसको छेड़खानी रास्ते में चल रही है तो कुछ भी उसको मिस वर्ड्स बोला जाता है, तो ये सब आपका आप ये शेल्टर ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉश एक्ट 2013 में।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारे श्रोता जरूर इसे सुन रहे होंगे ध्यान से, कि पॉश एक्ट के तहत वो सारी चीज़ें जो अशोभनीय है या आपत्तिजनक है, जैसे आपने अगर कोई गलत जेस्चर भी दिखाया, गलत नज़र से अगर आप किसी महिला को देख रहे हैं, कुछ आपने व्हाट्सएप इस तरह का कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए, बल्गर है या आपत्तिजनक है, तो ये सारी चीज़ें पॉस्ट एक्ट के तहत आती हैं और इसकी कंप्लेन की जाएंगी। और एक चीज़ और बताएं कि ये कंप्लेन कहाँ किया जाएगा। मान लिया कि जैसे कार्यस्थल, दो चीज़ें बता दें, कार्यस्थल किसे कहेंगे हम, कार्यस्थल में क्या सरकारी कार्यस्थल ही होते हैं या प्राइवेट की इसके क्षेत्र में आएगा, और दूसरा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है किसी महिला के साथ तो वो कहाँ कंप्लेन करेंगी।
2: देखिए, ये एक स्पेसिफिक कार्यस्थल आप नहीं कह सकते हो। यदि आप NGOs में काम कर रहे हो, प्राइवेट में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल्स में कर रहे हो, या ड्वेलिंग, इवन आप घर में जो काम करने वाले जो ड्वेलिंग भी हाउसेज में काम करती हैं, ये सब आपकी महिला को सुरक्षा दिया जाएगा। और यदि आपका कोई भी कंपनीज होता है या हॉस्पिटल्स होता है, या 10 से above आपका वर्कर्स रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इन दैट केसेस में आपको ICC इंटरनल कंप्लेन कमिटी, जो कि आपको आज इंसिडेंट हुआ विद इन 30 days में आपको ये इंसिडेंट्स का रिपोर्ट देना है। और ये क्या करेंगे, एक्सटेंड हो जाता है, 6 months का एक्सटेंशन होता है, लेकिन आप क्या इसमें, और जो उसके अगेंस्ट में हम लोग इंक्वायरी करेंगे, तो ये लोग जो इंक्वायरी करते हैं ICC जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ये विद इन 9th month में आपका इंक्वायरी कंप्लीट करके आपको रिपोर्ट इसको दे देना है। इसका सदस्यता आपका क्या होता है, 50% ओमेन रहती है, एक NGO से रहते हैं और एक एक्सपर्टाइज, एक जो सीनियर्स महिला रहती हैं इसको ये रहेंगे, और जो एक लीगल एक्सपर्टाइज फील्ड में रहते हैं ये आपका इसके जो मेंबर्स होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो 10 से नीचे बियॉन्ड रहे हैं, तो ये लोग कहाँ कंप्लेन करेंगे, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है, LCC लोकल कंप्लेन कमिटी, वहाँ पे आप बेकायदे जाइए, आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा डिस्ट्रिक्ट से, तालुकाज वगैरह जो रहेंगे ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स रहेंगे, वहाँ पे आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए। इस एप्लीकेशन में स्पेसिफिक सब रहेगा किसके अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, उसका नेम, डिटेल्स, इंसिडेंट्स कब हुआ, विटनेसेस कौन था आपके साथ, एलिगेशंस क्या हुआ, ये सब डिटेल्स एक फॉर्मेट के थ्रू आप लोकल कंप्लेंट कमिटी पे एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पे आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी गठित करते हुए उस जिसके अगेंस्ट में आपकी हो वहाँ पे केसेस को इंस्टीट्यूट किया जाएगा।
1: और ये जो आपने लोकल कंप्लेंट कमिटी बताई, ये किस स्तर पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत या किस लेवल पे?
2: ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो हेड्स होते हैं LCC जिसको लोकल कंप्लेंट कमिटी कहा जाता है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तालुकाज है, आपका नोडल्स, जो डिस्ट्रिक्ट में नोडल्स, ये लोग आपको मदद करेंगे आपका जो कंप्लेंट है, आपका शिकायत आपको पहुँचाने, एक्शन लेने के लिए आपको वहाँ पे मदद आपको मिल जाएगा।
1: तो ये तो बात हुई कि कार्यस्थल पर अगर कोई कार्यालय है या NGO है, किसी तरह का, निजी हो या सरकारी हो, अगर संस्था है तो कार्यस्थल वहाँ होंगे, वहाँ पर ये सुविधाएं मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू काम में भी कई महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, तो उन महिलाओं के साथ अगर कुछ इस तरह की घटना घटती है, वो कहाँ जाए?
2: सेम, यदि आपका घरेलू जो है, ये तो आपका ICC में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ICC का मतलब ही हुआ 10 and more इम्प्लॉयज जहाँ पर है, जैसे हॉस्पिटल्स रहा, NGOs रहा, हॉस्पिटल आपका कोई फैक्ट्रीज रहा, लेकिन जहाँ पे ड्वेलिंग हाउस, जैसे कोई घर में काम कर रही है, किसी मालिक का नियत खराब हो गया, व्हाट एवर इट मे बी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट तालुकाज में अपना, वहाँ पे जो है वहाँ से शेल्टर लेंगे, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। यदि वाकई में फाइंड होता है कि या देयर इज एन रीजनेबल कॉजेस कि अगला के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में FIR दर्ज किया जाएगा।
1: एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पास, कई बार महिलाएं मतलब संकोचवश या फिर उनका नाम ना आ जाए लोगों के बीच इस तरह की बातों को लेकर, मतलब इन बातों से अपने को दूर रखते हुए कंप्लेन करना चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि पब्लिक में उनका नाम आए, तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है कि ICC में अगर आप कंप्लेन करने गए तो आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी?
2: जी सर, आज के डेट पे ऐसा हो गया ना कि आप यदि कोई भी विक्टिमाइज्ड लेडी रहती है, कोई भी यदि आपका 376 का मैटर रिलेटेड खुद करते हुए यदि कोई भी लड़की विक्टिमाइज रहती है तो उसका हमारे हाई कोर्ट में हो या एक जजमेंट ही पास किया गया है कि विक्टिम्स का नाम कंसील कर देना चाहिए उसको इरेस्ट यदि आप कोई भी फाइल भी करते हैं केस में तो उसका नाम को कंसील करके XXX करके इसको इंडिकेट होगा ताकि ये महिला आराम से अपना शिकायत दर्ज करते हुए अपना गोपनीय जिसको कॉन्फिडेंशियली अपना एड्रेस को छिपाते हुए आराम से न्याय पा सकती है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है।
1: एक और प्रश्न मेरे जहन में है इन चीजों के लिए, जैसे कि बताया ना हमने शुरू में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके तहत आती हैं पॉश एक्ट के तहत, मतलब शेल्टर के ख्याल से, तो क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है ताकि पुरुषों महिलाओं दोनों को ये पता चल सके कि क्या आप कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या नहीं कर सकते।
2: ये तो दैट वन इज वेरी गुड क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा है कि यदि आपका क्या करना चाहिए तो पॉश एक्ट में सबसे बड़ी चीज है कि आप एक्ट्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए ताकि चलते फिरते कोई भी महिला को आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि पहले महिला को चल कोई भी चीज पे एक वल्गर कमेंट्स मिलता था, तो आज के डेट पे यदि आप इस तरीका से महिला के साथ कमेंट करते हो, यदि उसके कार्यस्थल में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, यदि उसको व्हाट्सएप चैट के थ्रू उसको परेशान करते हैं, तो अब महिला जागरूक हो गई है क्योंकि उसके साथ उसको एक बहुत बड़ा हथियार ये मिल गया है जिसे कि पॉश एक्ट कहा जाता है। अब ये बर्दाश्त करने वाली है नहीं, और हम सभी महिला को ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आपके साथ यदि इस तरीका से कहीं पे भी वर्क प्लेस में आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप बर्दाश्त ना कीजिए, आप ये पॉश एक्ट का एक शेल्टर लेते हुए आप जरूर आपने यदि आपके कार्यस्थल पे ICC होंगे, इंटरनल कंप्लेन कमेटी होंगे, उसके पास आप शिकायत दर्ज कीजिए। और लड़कों को भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि अब पहले जैसा आप लड़की को ट्रीट ना कीजिए, महिला को ट्रीट ना कीजिए कि अब महिला बैठी रहे, अब बहुत जागरूक हो गया है। हम इसी में कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ टेक केयर कीजिए और महिला सुरक्षा के लिए आगे रहें।
1: एक छोटा सा प्रश्न और अंतिम प्रश्न कि अगर कोई कार्यस्थल पर जो उस संस्था का उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो प्रमुख है, हेड है, और वही अगर उसी के अगेंस्ट अगर किसी महिला को कंप्लेन करना हो, वैसी स्थिति में कहाँ जाना चाहिए?
2: ऐसी स्थिति में महिला तो कभी जा नहीं सकती ICC में, चूंकि ही इज़ दी हेड ऑफ दी ICC की मालिक है, तो उस जगह पे तो नहीं जा सकते, बट उसके लिए प्रिविलेज दिया गया है LCC जिसको कि लोकल कंप्लेन कमेटी कहा जाता है। ये महिला बेफिक्र होकर अपना लोकल कंप्लेन कमेटी में जाके अपना शिकायत दर्ज करवा सके, वहाँ से उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा।
1: तो श्रोताओं, आपने देखा कि पॉश एक्ट के तहत, जिसे हम हिंदी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध

0: करेंगे उसके लिए उतना ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। जैसे कहते हैं सावधान सावधान रहे, बस आप लोग सावधान और सुरक्षित रहते हुए अपना पॉश एक्ट का शेल्टर ले लें।
1: बिल्कुल, तो आपके इस संदेश के साथ हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि हमारी जो खास करके महिला श्रोता हैं वो जरूर इस पर ध्यान देंगी और समझेंगी अपनी ताकत को, अपने अधिकार को। नमस्कार।
0: नमस्ते
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कानून की बात, जिसमें आज आपको जानकारी मिली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के बारे में। जानकारी दे रही थी सुश्री रूबी पांडे, जो कि झालसा के एडवोकेट मीडिएटर हैं। उनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से कार्यक्रम कानून की बात। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से।

0: FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। श्रोताओं शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक

0: मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
2: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
5: The government is supporting the sector through technology transfers.
6: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
4: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
6: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
8: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
9: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है ममता

0: को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय, जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली अपॉइंटेड यूथ एट 20th रोजगार मेला दिस आफ्टरनून। Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees,

0: Dawai Chano leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lovlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. With Bimal's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Sarabjit. On the Tata Group Pro, the Hindustan Times leads with Tata Sons Chandrasekharan move short of shareholder math. In the backdrop of the tussle between the two factions of Trinamool Congress, the pioneer rides, symbol stripped, Mamta faces her darkest hour. The statesman takes note, UAE President calls up PM Modi, reaffirms commitment to West Asia peace and stability. The Hindu notes, India-Nepal discuss post-flood recovery, reset in bilateral ties. In view of alleged regulatory violations, the Financial Express takes note, FSSAI move against Nestle infant products. 80 chefs, 450 menu items inside Asian Games kitchen. It's a culinary Olympics, says the Indian Express. Marathi film Gondhal is India's pick for Oscars 2027, informs the Hindu. And finally, the Asian Age on its middle page captures a picture of mother cheetah along with her cubs. India-born cheetah gives birth to four at Kuno. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce, and 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार. पहले यह संदेश.
4: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें. अपने घर के आसपास सफाई रखें. जल जमाव न होने दें. पानी के बर्तनों को ढक कर रखें. पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं.
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं. अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं. मुफ्त जांच और उपचार कराएं.
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
6: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया. चलो सब घर चलते.
7: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था.
6: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं.
7: अरे देख के, हाय गिर गए.
8: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी.
9: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है. प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है. माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना.
10: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना.
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
12: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है.
13: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है.
12: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह.
13: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर.
12: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है.
14: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र. देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जेएसएससी की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट किया रद्द. आयोग को 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश. पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात रांची के निजी अस्पताल में निधन. प्रदेश भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जताया शोक. साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में 21 सितंबर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। अगले 48 घंटों तक रांची में बारिश की संभावना नहीं। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही शुरू। 16 जिलों की 43 टीमें लेंगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये युवा राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश के 45 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जेएसएससी की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जेएसएससी को 4 सप्ताह में फिर से नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि यह मामला आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित करने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 11,000 नियुक्त अभ्यर्थियों में 2,000 सहायक आचार्य नियुक्ति से बाहर हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुमला जिले में एसआईआर की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को परेशानी ना हो, इसके लिए बीएलओ के साथ समन्वय और बूथवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और संदिग्ध मामलों की जांच कर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करें। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में दस्तावेज न होने पर उन्होंने पारिवारिक अभिलेखों से सत्यापन, विवाहित महिलाओं के लिए मायके के खतियान और को मान्य करने और फॉर्म 6 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाएं। हजारीबाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन के बीच कल विवाद हो गया। जिला प्रशासन की टीम योगेंद्र साव के द्वारा अतिक्रमण की हुई जमीन को मुक्त करने के लिए पहुंची थी। पूर्व मंत्री ने जमीन पर अधिकार से संबंधित दस्तावेज होने और पावर ऑफ अटॉर्नी का हवाला दिया।
15: हमारा एग्रीमेंट है, पावर है, रैयत से मैंने लिया है और नामांतरण के लिए भी आवेदन दिया है। हम तो वही बोल रहे हैं कि आप परमिशन दिखाइए और उसके बाद पूरा तोड़ दीजिए। कोई तो परमिशन दिखाइए, सरकार का रिज्यूम का हमको लेटर दिखाइए कि आप भाई अपने विधिवत आप रिज्यूम कर लिए जमीन को। तो कोई इनके पास परमिशन नहीं, कोई कागज नहीं। मेरे पास कागज है लेकिन ये देखना नहीं चाहते हैं।
3: वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंचे हजारीबाग सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने कहा कि यह खास महल की सरकारी जमीन है और इस पर निर्माण कार्य गैर कानूनी है।
16: ये जमीन रिज्यूम होने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उपायुक्त महोदय के स्तर से पूर्व में और आयुक्त महोदय के स्तर से दोनों के स्तर से सरकार को ये सब रिकॉर्ड भेजा जा चुका है। और अभी आपको पता होगा कि 2.5-3 महीने से हम लोग की सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है खास माल का, और हम लोगों को काफी जमीन की भी आवश्यकता है सरकारी कार्य हेतु, तो हम लोग अपना जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं।
3: पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात निधन हो गया। सिमडेगा की राजनीति को लंबे समय तक दिशा देने वाली पूर्व विधायक और मंत्री विमला प्रधान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से सिमडेगा के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। विमला प्रधान ने 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर सिमडेगा से जीत दर्ज की थी। वे रघुवर दास सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी थीं। उनके निधन पर प्रदेश भाजपा और विभिन्न पार्टी के नेताओं ने शोक जताया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल पूजा समितियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने पूजा समितियों से आपसी समन्वय से एक ही दिन विसर्जन पर आम सहमति बनाने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से सटाकर पंडाल न बनाने का निर्देश दिया।
17: आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को लेते हुए सभी पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ और हमारे जिला प्रशासन के सभी लोगों को साथ मिलकर हम लोगों ने बैठक की है और इसके माध्यम से जितने भी पूजा समितियों के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोगों ने लिए हैं और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी और विभिन्न विभाग उसमें कार्य करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ट्रैफिक के दृष्टिकोण से, हर चीज का वो सारा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिए हैं।
3: धनबाद जिले के सात बांधों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी फंड के 1,34,00,000 रुपए से कराया जाएगा, जिसके लिए लघु सिंचाई प्रमंडल ने दूसरी बार ई निविदा जारी की है। बांधों का जीर्णोद्धार का काम 3 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे जल संरक्षण और स्थानीय जल स्रोतों में सुधार की उम्मीद है। रांची में अपराध नियंत्रण को लेकर सिटी एसपी पारस राणा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ कल क्राइम मीटिंग की। उन्होंने किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
18: निर्देश दिया गया है कि जितने भी जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं उस पर जो है एक्शन लिया जाए, साथ ही साथ जो पूर्व के जो अपराधी हैं जो ऐसे फेस्टिवल्स में न्यूसेंस क्रिएट करने का जो पहले प्रयास कर चुके हैं उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाएगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो पंडाल के आसपास घूमते रहते हैं या फिर जो पिक पॉकेटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करके उस संबंधी निर्देश जो है वो सभी लोगों को दिया गया।
3: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 21 सितंबर से झारखंड में फिर से हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि अगले 48 घंटों में रांची में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में बारिश का असर देखने को मिलेगा।
19: साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी थाईलैंड में बना हुआ है और वो अंडमान सागर में इमर्ज करेगा, तो ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका मूवमेंट उत्तर पश्चिम पश्चिम ये दिशा में है और ये फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी भी गेन करेगा और थोड़ा सा मजबूत होगा, तो इसके प्रभाव में झारखंड में भी हम लोग देख सकते हैं कि 24 से 22 में बढ़ोतरी आपको देखने को जरूर।
3: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में 16 जिलों की 43 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू में होंगे। और अब प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट रद्द करने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने नियुक्तियां रद्द करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष रखे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, पूरी परीक्षा पर था सिंडिकेट का कब्जा, इसलिए रद्द करने का लिया गया निर्णय। दैनिक भास्कर ने मोस्ट वांटेड 2 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल की गिरफ्तारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले में 4 राज्यों में ईडी की छापेमारी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जेएसएससी की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट किया रद्द। आयोग को 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात रांची के निजी अस्पताल में निधन। प्रदेश भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जताया शोक। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में 21 सितंबर से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। अगले 48 घंटों तक रांची में बारिश की संभावना नहीं। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही है शुरू। 16 जिलों की 43 टीमें लेंगी भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
20: एक घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
21: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
20: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
21: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
20: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
21: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
20: पानी भी नहीं।
21: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
20: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
21: स्वस्थ बच्चा खुशियां अपार।
22: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: अले अले अले मुन्ना, कैसे है रितु? तुम्हें तो दस्त हो रहा था।
20: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
2: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
22: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
2: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
22: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
2: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
22: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें।
2: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
23: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार।

संजोग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे राजेंद्र किशन और संगीतकार मदन मोहन। मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, बोले राजा मेहंदी अली खान की, आवाज़ लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम अनपढ़।

जहां आरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। अब आइए सुनते हैं हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: हिंदुस्तान की किस्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले करते हैं आज की बात। ऊर्जा जगत के संचालन का आधार है, प्रेरणा भी उसी ऊर्जा का रूप है जो हर पल सही दिशा देकर जीवन का पथ प्रशस्त कराती है। समाज एवं देश हित में जब कोई खुद को समर्पित करता है तो सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। प्रेरणा आत्मिक शक्ति का आधार एवं संकल्प को साकार करने का मंत्र है। ऊर्जा का अपरिमित भंडार होने से यह मुख को संचालन तथा पंगु को भी पर्वत लंघ्य बना देती है। गहन और साध के क्षणों में जीने की सभी आशाएं छिन्न होने पर भी मृत्युंजय मंत्र बनकर नवजीवन का उपहार देती है। प्रेरणा मानव को जीवन रेखा है। प्रेरणा मानव जीवन की रेखा है। इसके दो रूप हैं, अंतः और बाह्य। अंतः प्रेरणा अंतरात्मा की उत्प्रेरक ध्वनि है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता या सुनकर भी अनसुना कर देता है। गुरुजन संत महापुरुष बाह्य प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके आचरण वाणी एवं कर्म से विकसित होने वाली ऊर्जा सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। मानसमेह गोस्वामी जी ने उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण कहकर परमात्मा को प्रेरणा का स्रोत कहा है। कभी यह आत्मबल से अनभिज्ञ महावीर हनुमान के लिए जामवंत बन जाते हैं, कभी पाश्चात्य संस्कृति का मोह स्मरण न कर पाने वाले के लिए विवेकानंद और दयानंद। विधि निषेध बोधक आत्मा सबके अंदर में विद्यमान है जिससे परमात्मा निहित कर्मों के प्रेरक नहीं है। अविहित कर्मों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। सृष्टि परमात्मा का प्रकट रूप है इसलिए इसका कण कण प्रेरणादायी है। हर परिस्थिति में धैर्य एवं संयम के साथ

अविरल चलकर नदी प्रवाहती है, निरंतर परहित की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा एक मौन संदेश है जिसका प्रभाव व्यक्ति को चिंतन दृष्टि पर निर्भर करता है। इसलिए किसी को अप्रिय घटना भी सकारात्मक प्रेरणा देती है, किसी को अच्छी घटना भी नकारात्मक। गीता के अनुसार कोई किसी क्षण कार्य के लिए किए बिना नहीं रह सकता, तो कर्म क्यों न ऐसे काम करें जो सबके लिए प्रेरणा बन जाए और अपने लिए आत्मसंतुष्टि का साधन। तो श्रोताओं, इस प्रेरणामयी बातों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हुसैन जैसीना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। बातें करेंगे अब खेल जगत से जुड़ी हुई। एशियाई खेलों में कमरों की कमी के चलते भारतीय खिलाड़ियों को नागोया पहुंचने पर परेशानियों से दो चार होना पड़ा। भारत के अभियान प्रमुख सहदेव यादव ने शुक्रवार को कहा कि यहां पहुंचकर ही पता चला कि आयोजकों ने 30 से 35 भारतीय खिलाड़ियों को आवास व्यवस्था की सूची से निकाल दिया है, जिससे हमें उनके लिए कमरों का इंतजाम करना पड़ा। कई भारतीय खिलाड़ियों को पहुंचने पर रहने की व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कमरों के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ा। यादव ने कहा कि आयोजक समिति ने हमें बताया कि भारत से अपेक्षा से अधिक खिलाड़ी आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उतने ही खिलाड़ी भेजे हैं जितने तय हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नाम हटा दिए जिसके लिए हमने होटल बुक किए थे। करीब 30 से 35 खिलाड़ियों को लेकर परेशानी हुई। हमारी टीम ने फुर्ती दिखाते हुए कमरे बुक किए। टीमों के आगमन पर व्यवस्था को लेकर कुप्रबंधक देखने को मिला, लेकिन कहा कि इस स्तर पर आयोजन में ऐसी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि कुप्रबंधन तो है, लेकिन यह बड़ा आयोजन है और ऐसा होता है कि हमें इससे आगे देखना है। हमें अपने खिलाड़ियों की समस्याओं का हल करना है और उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह देनी है, ताकि वे मानसिक और शारीरिक तौर पर अच्छी स्थिति में रहें और पदक जीत सकें। भारतीय क्रिकेट में जब भी किसी बड़े खिलाड़ी की फिटनेस और कार्यभार प्रबंधन की बात होती है तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले आता है। लगातार चोटों से जूझते रहे बुमराह ने हाल ही में अफगानिस्तान के विरुद्ध मैदान पर वापसी की है और ऐसे में एशियाई खेलों में उन्हें उतारने का फैसला सवालों के घेरे में है। क्या बुमराह को एशियाई खेलों में उतारना वास्तव में ज़रूरी है, या फिर उन्हें आईची नगोया में होने वाले इन खेलों से विश्राम देकर आगामी वेस्ट इंडीज सीरीज और उसके बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए पूरी तरह फिट रखना ज़्यादा व्यवहारिक होता। बुमराह को जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान घुटनों में चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने करीब दो महीने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेवा लाभ लिया। लंबे ब्रेक के बाद उन्हें हाल में अफगानिस्तान के विरुद्ध 3 मैचों की T20 सीरीज में मौका दिया गया। यहां खिलाने के पीछे तर्क किया था कि उनकी मैच फिटनेस की परख हो जाए, लेकिन नेपाल या अन्य कमजोर टीमों के विरुद्ध एशियाई खेलों में बुमराह की जरूरत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में ने भी मजबूत टीम नहीं भेजी है। पिछले संस्करण में भारत ने अपेक्षाकृत युवा और दूसरे पंक्ति की टीम उतारी थी। बीसीसीआई मुख्यालय में शुक्रवार को हुई वार्षिक आम बैठक में बीसीसीआई के सदस्य इकाइयों ने चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ाने या उनकी जगह किसी और को लाए जाने का फैसला लेने का अधिकार बोर्ड के पदाधिकारियों को सौंप दिया है। अगरकर लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि उनका अनुबंध 4 अक्टूबर को खत्म होने वाला है और बीसीसीआई उनकी जगह किसी और को लाने पर विचार कर सकता है। बैठक के बाद बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पदाधिकारियों के चयन समिति से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। बीसीसीआई ने 95वीं AGS में संस्था से जुड़े राज्य सदस्य बोर्ड शामिल है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, बंगाल क्रिकेट संघ और पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ भी मौजूद हैं। सीनियर चयन समिति के चेयरमैन के भविष्य के साथ साथ बीसीसीआई जूनियर चयन समिति की सभी 5 पोस्ट को भरना चाहता है। इस बीच मुंबई क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि अहम मैचों की मेज़बानी सौंपते समय उन पर भी विचार किया जाए। यह बात राज्य संस्था के सेक्रेटरी उन्मेष खानविलकर ने कही है। उन्होंने मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। यहां आखिरी टेस्ट 2024 के आखिर में न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला गया था। शहर में होने वाले आगामी क्रिकेट मैचों में अगले साल की शुरुआत तो होने वाली पहली महिला चैंपियन लीग और महिला प्रीमियर लीग का कुछ हिस्सा भी शामिल है। तो श्रोताओं, ये तो हो गई खेल की बातें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जो ऐसी परंपरा है कि हम चर्चाओं के बाद जानकारी के बाद गीत सुनवाते हैं, तो चलते हैं गीतों की

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहर पलामू और मैं हुसैन जैसी न्याय। हम डालते हैं एक नज़र स्थानीय खबरों पर। धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना मनाई गई। अनेक स्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की आराधना किया गया। आकाशवाणी परिसर में भी बड़े धूमधाम से आकाशवाणी परिवार के लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और इसका विसर्जन किया। विसर्जन के उपरांत एक स्नेह भोजन का भी आयोजन किया गया था आकाशवाणी परिसर में। और बताते चलें कि महासमिति, दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक कल होने वाली है। श्री केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति पलामू की वार्षिक बैठक 20 सितंबर रविवार को होगी। बैठक दुर्गा मंडप में दोपहर 12:15 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में महासमिति के वार्षिक चुनाव, आगामी दुर्गोत्सव की तैयारी और पूजा आयोजन की व्यवस्थाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। दुर्गा उत्सव को सफल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और आगामी कार्य योजना पर भी विचार विमर्श होगा। महासमिति के अध्यक्ष दुर्गा जौहरी ने सभी पदाधिकारियों और सम्मानित सदस्यों से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी नवाबाजार प्रखंड की ओर से मंडल अध्यक्ष महादेव प्रसाद यादव के नेतृत्व में वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा तुकबेरा अम्बेडकर टोला स्थित पंचायत समिति सदस्य अमरेश राम के घर से शुरू हुआ था। मेंस में खाने में कीड़े व कांच के टुकड़े मिलने से पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा हुआ। जिले में बसौरा स्थित पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार देर शाम मेंस के भोजन में गुणवत्ता और रसोई की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। मेस में परोसे जा रहे भोजन में लगातार कीड़े व कांच के टुकड़े, बाल और लोहे के तार मिलने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने कॉलेज में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने वर्तमान मेस वेंडर को हटाने के साथ ही भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की मांग की है। विद्यार्थियों ने मेस की रसोई और भोजन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की स्वच्छता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भोजन की गुणवत्ता में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ। छात्राओं ने दूरभाष पर मामले की जानकारी पलामू आयुक्त दिलीप प्रताप उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से की। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर सदर SDO संजय पांडे, अंचलाधिकारी जागो महतो और फूड इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम कॉलेज पहुंची। अधिकारियों ने मेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई भोजन तैयार करने की जगह, बर्तन बैठने की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई समिति विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल की गई।

प्रमुख खबरें। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार तड़के पूर्व मेदिनीपुर जिले के में छापेमारी कर प्रबंधित माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य और शीर्ष माओवादी कमांडर 64 वर्षीय असीम मंडल उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट पर की है। कहा कि राज्य में लाल आतंक रेड टेरर से किसी भी तरह के विस्तार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर है कि झारखंड सरकार ने माओवादी कमांडर पर 1 करोड़ रुपये और उड़ीसा सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। कुल मिलाकर उसके सिर पर 2 करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में लंबे समय से यह लाल आतंक का पर्याय बना हुआ था। माओवादी नेता आकाश के खिलाफ तीनों राज्यों में करीब 55 मामले दर्ज हैं। लंबे समय से सुरक्षा बलों की उसकी तलाश थी। पूर्व मेदिनीपुर के लाल घाट इलाके में उसे पकड़ा गया। मुख्यमंत्री ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि आकाश 15 वर्षों से अधिक समय से अंतर्राज्यीय वन क्षेत्रों में एजेंसियों से बचता रहा था।

श्रोताओं, मैं हूँ संजय सिन्हा और आप सुन रहे कार्यक्रम जोर पलामू। पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और क्या कहता है 19 सितंबर का इतिहास, जानते हैं। आज ही के दिन 1891 में विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक और मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज ही के दिन यानी 19 सितंबर 1893 को, 1893 की ही बात करें, आज के दिन न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था।

और 1857 की बात करें तो अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1962 में भारत में उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। आज के दिन 18 सितंबर 1962 को 18 सितंबर 1982 को स्कॉट फॉरमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 2007 में साइबर वार की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने अस्थायी कमांड का गठन किया था। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए सालवाडू यूजन के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था। 2009 में गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों की मामलों की जांच कर रहे नानावती आयोग ने राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 6 अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया था। हम उन्हें याद कर ले जिनका आज जन्मदिन है, महापुरुषों का। सत्यदेव प्रसाद भारती तीरंदाज हैं। इनका जन्म 1979 में हुआ था। 1958 में लकी अली भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता। इनका जन्म 1998 में हुआ था। 1965 में विनीता विलियम्स अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इनका जन्म हुआ था 1965 में। आकाश चोपड़ा भारतीय क्रिकेटर, 1977 में इनका जन्म हुआ था। कुंवर नारायण हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि, इनका जन्म 1927 में हुआ था। हम उन्हें याद कर लें जो आज के दिन हम सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा था। सरस्वती प्रसाद, चर्चित लेखिका सुमित्रा नंद पंत की मानस पुत्री, इनका निधन 2013 में हुआ था। 1988 में पी शोलू ए वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध राजनीतिक दल नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था। 1965 की बातें करें तो आज ही के दिन बलवंत राय मेहता भारतीय राजनीतिज्ञ और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ था। विष्णुराम नारायण भरतखंडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान, इनका निधन 1936 में हुआ था। 1719 में जफरी उद्दौला भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल वंश का 11वां बादशाह, इनका निधन हुआ था। 1581 में सिख गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, इनका निधन 1581 में हुआ था।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का जोहार परामो कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने दोस्त संजय सिन्हा को आगे दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गीत।
1: मेरा मन तेरा प्यारा,
0: आवाज है मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का गीत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं एमजी शिव कुमार और अनुराधा पटवाल की आवाज़ों में डोली सजा के रखना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: अनुराधा पौडवाल के साथ आप सुन रहे थे एमजे शिव कुमार की आवाज। फिल्म थी डोली सजा के रखना। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं दिल जले फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मलिक।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

तेरी कसम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज़ में। इसी गाने के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, दिन के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के बाद विविध भारती के कार्यक्रम।

0: बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने
1: रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित

0: natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held today. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Toor will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from today until 4th of next month. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Andhra Pradesh, Telangana, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से
1: 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है, तो नोट कीजिए।
3: तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं, तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं, और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक।

0: क्या खूब है, अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था, जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था, उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी।
1: इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और इस पूरे प्रयास के केंद्र में रहा माननीय

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती, हाँ सच में। ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितनी ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में।

0: पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूं और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंगों में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो

बत्ती जला रखी थी मैंने, हाँ, मगर मगर कहाँ कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया, आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर

अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था। और वो कहाँ रहता है, मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं।

जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, टेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। कोई रास्ता भी सुझा सकते थे, बस फिर क्या था। वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था, और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है, जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है।

0: नहीं। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो।
1: जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी। यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था। कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी ओमी ओमी ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं उसमें, न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने?

मुझे कुछ तुम ही हो वो ओमी, जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बढ़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब? पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।

आपकी कसम, इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, साहिल उद्यानवी के बोल।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी। और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूँ।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।
2: बिल्कुल
1: इरशाद।
2: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
1: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
2: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
1: दश्ते जुनू में,
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
2: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, अच्छा गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है।
2: जी एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
1: वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पिटा ले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
2: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
1: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में,
1: जी
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी,
1: जी
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे।
1: वाह आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
1: तो दर्द क्या,
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया,
1: जी
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे, और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
2: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं,
1: जी
2: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ, जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, लेकिन कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। इतना मुझे पता था कि गजल का एक उरूज होता है और उस उरूज को समझना बहुत जरूरी है गजल कहने से पहले। 1993 एक ऐसा साल था जहां मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने कविता लिखना और कहानी लिखना, मतलब लेखन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी, और उसी में पूरी तरह से डूब के रह गया मैं।
1: इससे पहले आप क्या कर रहे थे?
2: इससे पहले मैं बीएससी और एमबीए किया मैंने।
1: तो ये जो बीएससी है ये तो विज्ञान की पढ़ाई हुई,
2: जी
1: फिर अचानक एमबीए की तरफ घूम गए आप?
2: एमबीए चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस

0: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
1: बिल्कुल गया मैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
0: तो ब्रेक लिया?
1: ब्रेक लिया मैंने जॉब से, और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
0: कितने बरस तैयारी की?
1: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
0: ओहो हो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट्स थे या क्या?
1: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट्स थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे।
0: जी जी,
1: यूपीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
1: जी,
0: है ना, वो आग का दरिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
1: हाँ बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी समय लग गया।
0: अच्छा।
1: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
0: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट्स थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
1: जी,
0: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करे होंगे, क्योंकि पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल या एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
1: बिल्कुल
0: एक टेबल,
1: बिल्कुल
0: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
1: बहुत बड़ा।
0: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
1: जी,
0: तो क्या सलाह, एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले?
1: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
0: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
1: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
0: ओके
1: जी,
0: तो ये बड़ा कठिन,
1: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
0: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने
1: जी,
0: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
1: पॉपुलर था मेरे लिए
0: जी। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
1: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
1: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था और उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
0: बिल्कुल, वो एक
1: तरोताजगी मिल जाती थी
0: जी। एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की
1: जी।
0: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
1: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
0: बिल्कुल
1: जी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे, और उस समय मेरी मुलाकात हुई अखिल नुमानी साहब से, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया।
0: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके उस्ताद
1: हो
0: जिनसे आप मश्क करें कि भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: सिलसिला
1: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहाँ बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया, और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया
0: जी। जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना
1: जी, बेशक।
0: तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गई?
1: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर यह था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं, और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं कि उसमें अच्छी गजल जाए। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था, और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जैसा, वो काफी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए,

0: इस किताब को लेके आए और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
1: वाह बढ़िया।
0: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसको एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
0: नहीं, छोटी नशस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
1: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
0: जी,
1: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
0: बेशक।
1: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
0: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लफ्जिश ना हो जाए और कहीं जरा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया। तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने और फिर प्रस्तुतियों में भी अपने कुछ निखार आया, थोड़ा बेहतर हुआ जैसा लोग बताते हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूं और अभी बहुत सारा रास्ता मुझे तय करना है।
1: अब मुझे ये बताएं कि जब आप अब पढ़ते हैं और आपके चारों तरफ कुछ जाने माने शायर मौजूद होते हैं जो बरसों बरस से पढ़ रहे हैं और मुशायरे में मौजूद हैं, जिनको आप पहले सुना करते थे,
0: जी,
1: तब दिल में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, तब भी दिल में ये चलता है कि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं, कुछ गलत कह ना जाऊं, और ये भी इच्छा रहती है कि वो मेरे शेर को गौर से सुने और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
1: इस तरह के अनुभव होंगे, वो हमारे साथ बांटिए।
0: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
1: ओहो,
0: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
1: वाह, अच्छा है, अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है।
0: जी,
1: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
0: देखिए, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो, चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
0: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: हाँ।
0: बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गंवाओ।
1: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
0: ये सीधी सीधी बात हो
1: ये मतलब आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
0: जी जी जी, ऐसे ही मेरी गजल है। मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
1: जी
0: अपने विषय उठाता हूं।
1: जी इरशाद।
0: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
1: जी,
0: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
1: बहुत मशहूर
0: कहावत है। जी, तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
0: छह दिन में भी 72 निकले।
1: ओ, उल्टी बात कही है।
0: उल्टी बात है।
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले। दफ्तरों में ना मिला एक इंसान।
1: वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
1: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत। वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
1: क्षितिज ओझल है,
0: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
0: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारी छोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तुम के पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
1: बढ़िया है।
0: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
1: वाह।
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
1: औजार देखे,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
1: सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है।
0: जी। एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में है हिंदी की।
1: जी।
0: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। के पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं,
1: वेदना का व्याकरण
0: पढ़ रहा हूं, वेदना का व्याकरण मैं हूं समर में आज भी ये रे क्षण में।
1: वाह।
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो,
1: जी
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
1: क्या बात है।
0: रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, खोल बाहें कर रहा हूं दुख ग्रहण में।
1: वाह।
0: ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूं अपनी ही वै का शरण में।
1: वाह।
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी,
1: जी
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण में।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा,
1: एटम बम
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूं एक कण में।
1: वाह, बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है।
0: ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया।
1: देखिए दर्शन तो आया जी, पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूं मैं आपके सामने के। बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या,
1: जी
0: बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह।
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं जो लाइव, जो सब्सक्राइबर हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन आता है।
1: जी जी, बहुत बड़ी तादाद है।
0: बहुत बड़ी तादाद है, और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खासतौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूँगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं, और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने शायरी को चुना।
1: जी,
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह

0: सकता हूँ और उसको नोट कर सकता हूँ या दिमाग में रख सकता हूँ। दिमाग से तो निकल जाता है तो अक्सर वो
1: स्लिप में
0: लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है, अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी जी।
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा
1: जी,
0: जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ।
1: जो
0: पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था बल्कि बहुत मशहूर लेखक शायर हैं कवि हैं ओम निश्चल जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं, उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं उन सब पे एक एक किताब निकाली उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में
1: शामिल किया, सिलसिले में उन्होंने चुना आपको।
0: जी,
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज़ चारागरी भी करते हैं ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ कि मौसम के बदलाव दिखाऊं।
1: जी,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं।
1: वाह वाह।
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं, जहरीले लहजों में उलझे, जहरीले लहजों में उलझे, रिश्तों के उलझाव दिखाऊं।
1: वाह।
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं।
1: वाह।
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं, घर का आंगन सिमट गया है, घर का आंगन सिमट गया है, रिश्तों का बिखराव दिखाऊं।
1: वाह वाह।
0: देखो तो बंजर बस्ती में, देखो तो बंजर बस्ती में, हिजरत का फैलाव दिखाऊं।
1: वाह वाह वाह।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं।
1: बढ़िया है, बहुत अच्छा।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं। एक गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी।
1: जी,
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी।
1: वाह।
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं,
1: रूह पे भी छाले हैं।
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी।
1: वाह वाह वाह।
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी, बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी।
1: वाह वाह।
0: बन के जंजीर मेरे पाँव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी।
1: क्या बात है, वाह।
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है।
1: जी,
0: वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई
1: शनासाई थी। क्या बात है।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
1: आह, प्यारी लाइन।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: वाह, क्या बात है, कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए। आलोक जी, इतनी सारी बातें हुई, आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते, तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: वाह, साहिर लुधियानवी फिल्म का नाम है। कभी कभी खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं।

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक की यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर शबीर कुमार की आवाज़ इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एसएच बिहारी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ।

0: एसएच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: कदील शिफाई की रचना आपने सुनी उत्तम सिंह जगदीश की तर्ज थी, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजें और पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर

0: सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज फिल्म खिलौना, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अनजान की रचना आपने सुनी है, चित्रगुप्त का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग। फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

0: तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of country's youth have won

0: the trust of the entire world.
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है. इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है. रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है. भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है.
0: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the conference of the parties 21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
0: On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This is the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India continues to support Nepal's recovery. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah today said that disaster early warning systems will be implemented on the highest priority following devastating floods in the Bhote Koshi and Trishuli river basins that caused extensive loss of lives and infrastructure damage. The United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. The experts called for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture, or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a 3-day Zubin Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आपके साथ सुनिधि गुप्ता. और आप सुन रहे हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम जो कि आप सभी को बहुत पसंद आता है, एक ही फिल्म से. दोस्तों हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जादू सिर्फ उनके गीत संगीत या सितारों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहता. कुछ फिल्में अपने कथानक, रहस्य और रोमांच के कारण दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं. आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है. आज हम बात करेंगे साल 1965 में आई एक रोमांचक और रहस्य से भरपूर फिल्म 12 o'clock। जी हाँ, नाम सुनते ही आपके मन में शायद घड़ी की सुइयां घूमने लगी होंगी। रात के 12 बजने वाले हों, सन्नाटा हो और तभी कोई ऐसा रहस्य सामने आ जाए जिसका जवाब पूरी दुनिया को बदल दे। तो आइए आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जाने इस दिलचस्प फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, संगीत और उन तमाम बातों के बारे में जो इस फिल्म को यादगार बनाती है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि और आइए सुन रहे हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, 12 o'clock सिर्फ एक रहस्य और अपराध की कहानी नहीं है, इस फिल्म में रोमांस और संगीत के लिए भरपूर जगह है। फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर, जिनका संगीत अपने खास अंदाज, लय और ठेठ भारतीय रंग के लिए जाना जाता था। और जब ओपी नैयर का संगीत हो तो गीतों में एक अलग ही चंचलता और ऊर्जा महसूस होती है। तो आइए फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत है, सुन लेते हैं, कैसा जादू बालम तूने

दोस्तों, ओपी नैयर की खासियत ये थी कि उनके संगीत में भारतीय धुनों के साथ साथ पश्चिमी वाद्य संगीत और लय का भी खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता था। उनके संगीत की यही पहचान इस फिल्म में भी सुनाई देती है। तो और अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अपराध से जो पूरी फिल्म के रहस्य की नींव रखता है। फिल्म में एक हत्या होती है और परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि शक की सुई एक महिला की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया वही वास्तव में हत्यारा है, या फिर इस अपराध के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। यही सवाल दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखता है। फिल्म के प्रमुख कलाकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, कैमरा, प्रकाश और भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने आप में विशिष्ट थी। 12 o'clock में भी उनका अभिनय कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीदा रहमान की बात करें तो वहीदा रहमान का परिचय और अब उस बात पर अभिन और अब बात उस अभिनेत्री की करेंगे जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी अभिनय क्षमता ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। वहीदा रहमान। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ साथ काम किया और उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही। 12 o'clock में भी दोनों की मौजूदगी फिल्म के आकर्षण को बढ़ाती है। और फिल्म में संगीत दिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपी नैयर ने। ओपी नैयर का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा संगीतकार उभरता है जिनकी धुनों में एक अलग तरह की रवानगी रहती है। उनके गीतों में ताल, गति और ऑर्केस्ट्रन की विशेष भूमिका होती है। फिल्म 12 o'clock में गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को भी सामने लाते हैं। इसके गीत इस तरह से लिखे हुए और ढले हुए हैं कि खुद ब खुद फिल्म की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आइए इसी बात पर सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इनफ्लुएंस चैनल और अपना और अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर और कई अन्य संगीतकार अपनी अलग-अलग संगीत शैलियों से हिंदी सिनेमा को मजबूत कर रहे थे। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि इस फिल्म का नाम 12 o'clock ही क्यों चुना गया। दोस्तों फिल्म का नाम ही अपने आप में एक उत्सुकता पैदा कर देता है, 12 बजे का समय, लेकिन घड़ी में 12 बजना अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं है। फिर इस फिल्म का नाम इस फिल्म की कहानी से क्या संबंध है? यही वह सवाल है जो फिल्म के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की 12 o'clock की, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रात का समय, सन्नाटा, अपराध और एक ऐसा मामला जिसमें सच और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं, यही वातावरण फिल्म को एक खास रहस्यपूर्ण रंग देता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाएं जटिल होती जाती हैं। एक तरफ है अपराध का मामला और दूसरी तरफ है उसे सुलझाने की कोशिश। हर सुराग एक नया सवाल खड़ा करता है। जिस बात को सच समझा जाता है उसके पीछे एक और कहानी निकल आती है और दर्शक लगातार सोचते रहते हैं कि आखिर असली सच है क्या। यही रहस्य 12 o'clock की कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए हम ये इस फिल्म की बात करते रहेंगे, लेकिन माहौल को थोड़ा रोमांटिक भी बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मैं

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अभी आपने गीता दत्त की आवाज में सुना अरे तौबा फिल्म 12 o'clock से। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ipradiodelhi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप और कौन सी फिल्में इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock का ये गीत, और दोस्तों यही तो हिंदी फिल्मों की खूबसूरती है। एक ही फिल्म में जहाँ रहस्य और अपराध का तनाव हो सकता है, वहीं उसी कहानी में प्रेम, भावनाएं और संगीत भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही एक सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में।

दोस्तों कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से ही अभिनय करते हैं और दर्शक उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बस उन्हें वही जोड़ी हर पर्दे पर चाहिए, हर फिल्म में चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान मिला। इन दोनों की फिल्मों में भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। गुरुदत्त की फिल्मों की दृश्य भाषा और वहीदा रहमान की सहज अभिनय शैली का मेल दर्शकों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। 12 o'clock में भी इस जोड़ी के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में और भी अन्य कलाकार हैं, लेकिन आइए अब हम सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है। जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके नए तथ्य सामने आते हैं, लेकिन हर नए तथ्य के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है, उसके पक्ष में भी कुछ बातें सामने आने लगती हैं और अपराध की वास्तविकता को समझना और भी कठिन हो जाता है। यहीं से फिल्म दर्शकों को अपने अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म 12 o'clock की। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस फिल्म के एक और बेहद खूबसूरत गीत के साथ, जो कि मोहम्मद रफी की आवाज में है। आइए सुन लेते हैं।

हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तम हंसी, कहाँ है दिल किसे पता।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण हुईयां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वख-वख सरकारी अदारियां विच नवे नियुक्त होए नौजवानों को 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने अज नवी दिल्ली विच वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविख विषय बारे एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करदिया कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी विच भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तो भी घट है। भारत विच कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी विच तेजी नाल वाधा हो।

0: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ ਨਾਗੋਯਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वख-वख सरकारी अदारों में नवे नियुक्त हुए नौजवानों को 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके संबोधन करते श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के नौजवानों लिए मौकों के नवे दरवाजे खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजिहे व्यापारिक समझौते देश के उद्यमियों लिए नवी भाईवाली और नौजवानों लिए करियर की नवी संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की प्रतिभा और हुनर ने पूरी दुनिया का भरोसा जीत लिया है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: इस मौके अमले जनतक शिकायतों ते पेंशन राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले राही रोजगार सिरजन अते भर्ती दे मुलांकण तो पता लगता है कि सरकारी नियुक्तियों विच काफी वाधा होया है। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रणाली नूं बेहतर बनाने लई कई पहलकदमियां कीतियां गईआं ने। देश भर विच 45 थावां ते 20 रोजगार मेला आयोजित किया गया। नवे भर्ती हुए उम्मीदवार भारत सरकार के वख-वख मंत्रालयों ते विभागों विच शामिल होणगे जिन्हां विच वित्त रेलवे गृह सेहत अते परिवार भलाई अते रक्षा मंत्रालय आदि शामिल ने। 20वें रोजगार मेले नाल हुण तक कुल मिला के लगभग 12,75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिल चुके ने। यह रोजगार मेला नौजवानों लई रोजगार के मौके पैदा करना ते देश की विकास यात्रा में उन्हां दी वध तों वध हिस्सेदारी यकीनी बनाने लई सरकार के निरंतर यत्नां नूं दर्शाउंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी में भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तों भी घट है। अज नवी दिल्ली विखे वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविख विषय से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कानफ्रेंस का उद्घाटन करदे श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को कार्बन निकासी लई वार वार जिम्मे ठहराना गलत है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों दौरान वातावरण नाल संबंधित सारे खेत्रों में बेमिसाल तरक्की की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत होर देशों के सहयोग नाल काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नवीन युग ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिता है वातावरण संभाल विच अहम भूमिका निभाई है।
1: हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्य कांत ने इस मौके बोलदे कहा कि धरती संभाल का विचार देश में वातावरण ट्रिब्यूनल नियमबद्ध विधियां और पालना ढांचे के होंद में आने से पहले मौजूद थी। उन्होंने जंगलों झीलों नदियों और जंगली जीवों समेत कुदरती वातावरण की रक्षा और सुधार करन और जीवों प्रति हमदर्दी रखने के हरेक नागरिक के बुनियादी फर्ज की महत्ता को रेखांकित किया। वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली मंत्री भुपिंदर यादव ने कहा कि भारत का वातावरण प्रति दृष्टिकोण इसकी प्राचीन विचारधारा विच डूंघाई नाल जुड़िया हुआ है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकद हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फोरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप
1: पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था, प्रेम नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। श्रोता, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर ये कार्यक्रम जो है, जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं, तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आए लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए, अपनी

मोहम्मद रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविद भारती मुंबई के श्रोता हैं हम और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

दृढ़ता उसे बड़ा और विराट बनाती है। आपके हाथ में है विकल्प, अहंकारी बनकर छोटा बनना है या विनम्र होकर विशाल बने रहना है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे समय का आनंद लेना चाहिए। अहंकार आपको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है।

दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग वक्त को स्थायी मान लेते हैं, ये उनके विचारों की भूल है। आज आपके पास सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ ना हो। इसलिए जब किसी से कोई बात कहें, किसी से बुरा बर्ताव करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके गुरूर से चूर बातों से सामने वाले का मन कहीं आहत तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग अहंकार में डूबकर आत्मश्लाघा में लीन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इन बातों से बचना चाहिए।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

फिल्म छाया का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल सलील चौधरी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म ससुराल का गीत था। हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात,
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम

0: और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम

0: सुहाना हो गया एक हंसी।
1: सोमवार को आएंगे, वीसी के थ्रू अपीयर किया जाएगा, क्योंकि उनका बहुत सारा प्रोटोकॉल है जो कि पेशी से समय देखना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से, हर तरह से दृष्टि से।
2: रांची की विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस घटनाक्रम पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा रहा है और उनके समय में भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका है। इधर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि विपक्ष दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कोर्ट पर पूरा भरोसा बताते हुए उम्मीद जताई कि 21 सितंबर को होने वाली कोर्ट की पेशी में उन्हें न्याय मिलेगा। साहिबगंज में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना किया।

0: गया। उपायुक्त दीपक दुबे ने इसे हरी झंडी दिखाई। मौके पर परियोजना निदेशक संजय कुमार ने बताया कि 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त कर स्वस्थ बनाना है।
1: पूरे झारखंड 9वें राष्ट्रीय पोषण माह भी को 26 मना रहा है। इसमें कई तरह के चीजें हैं, जैसे हमारे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र खुले, वहाँ को पोषाहार का वितरण, और अभी कई तरह की योजनाएं भी फ्लैक्सी योजनाएं भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। थोड़ी देर में

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आप

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये, मनमोहन राजावत, मधु राशि, चित्रंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना। आप सुन रहे थे बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता, इस गीत को इन्होंने पसंद किया था, प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक, और इसी गीत को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी, सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा, और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा नाहिद, फरीदा जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष, सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता, नारायण, गणेश और संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा। आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था छुड़ाओ। और यही है आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्ने वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महामात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: महाति योगंधरायण कैसा वन है ये, हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी। चलते चलते थक गई हूं मैं, ये दिन फिर देखना थे हमें।
1: आर्या वासव दत्ता, चिंतित ना हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र, सोच कर कांप उठती हूं। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वनगमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाए, सिहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप न होते तो क्या होता मेरा। और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करनी करना है देवी वासवदत्ता, मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाती योगंधरायण,
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है ना आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस्वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगंधरायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वह तपोवन है, क्यों न हम वहां चले।
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दें, आर्य हट जाए, मार छोड़ दें।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है, पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं, ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
2: मार छोड़े, ए आर्या हट जाए, मार छोड़ दे।
0: आर्य योगंधराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा
2: रहे? ए आर्या, मार छोड़ दे।
0: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पतिवत्सराज उदयन के विजय होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं।

0: ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
1: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
2: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
0: जी,
2: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
0: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
2: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व सा जागृत हो रहा है।
3: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
4: स्वागत है राजकुमारी।
5: स्वागत है राजकुमारी। आगे तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
6: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
4: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य। बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
3: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
6: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
3: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूत भेजा है।
7: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूत भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
4: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
0: राजकुमारी की जो इच्छा।
8: आश्रम के तापसजन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
2: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
4: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
6: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
0: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
2: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
4: फिर क्या चाहते हैं आप?
2: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।
0: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है। धन, प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा?
4: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहें वही संपन्न हो।
0: जो आ गया राजकुमारी जी।
2: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती। जाओ अवंतिके, देवी के समीप जाओ।
7: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका।
4: चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
7: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
4: आओ अवंतिके, हमारे साथ चलो।
2: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीतकर सिंहासन आरूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासव दत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
9: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं, कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे ये सामने शायद तपोवन है। हाँ तपोवन ही है, निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम, निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
8: ब्रह्मचारी पधारें।
10: आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान, लीजिए शीतल जल ग्रहण करें।
9: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
10: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
11: प्रणाम।
9: आयुष्मान भव।
10: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
11: प्रणाम।
10: और ये इनके भाई।
12: प्रणाम मुनिवर।
10: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
11: प्रणाम मुनिवर।
9: आयुष्मान भव।
12: ब्रह्मचारी आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
9: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं, वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
11: लावणक ग्राम में।
12: अध्ययन समाप्त हुआ?
9: नहीं तपस्विन, नहीं।
12: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
9: वहां एक दुखद घटना घटी।
12: वो क्या?
9: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
11: स्वामी।
9: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
11: मेरे स्वामी।
9: जब राजा अन्यत्र आखेट खेलने गए, तब तब तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
11: क्या?
12: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
9: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
11: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूं, उसी के बल आज जीवित हूं, आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर

0: फिर महाराज उदय रानी वासव दत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित हो गए।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंतिका विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: नारो नारो अवंती की। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिण फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और हाँ वासव दत्त
4: हाँ अवंती राजपुत्र, हाँ प्रिय,
0: हाँ
4: शिष्य, वासव दत्ता, हाँ वासव दत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्णवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्णवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। वासवदत्ता, आप ये हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
2: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
2: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
5: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी।
6: शांत वेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
5: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
2: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: ये रही तुम्हारी गेंद।
1: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: राजकुमारी, कुमारी

0: जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करें।
1: सना, क्या कह रही है चेचे?
2: सुन रही हूँ अवंतिके, पर बताओ हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
1: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
2: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
1: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
2: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
1: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
2: ये महासेन कौन है?
1: नहीं जानती। उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
2: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
1: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य चेठी?
2: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
1: वत्सराज?
2: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
1: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
2: क्या क्या हुआ देवी?
1: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों?
2: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
1: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
2: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
1: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
2: अवंतिके, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
1: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
2: ओह हाँ, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
3: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपके मंगनी हो गई।
1: मंगनी हो गई?
3: बधाई हो राजकुमारी।
1: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
2: वत्सराज उदयन के साथ।
1: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
2: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंतिके, वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
1: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
2: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य ज्ञान वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
1: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। मेरा मन भी यही कहता है।
2: ओ राजकुमारी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: राजकुमारी पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़ मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है आर्यपुत्र, वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्या अवंतिका जाने कहां गई। ओ, प्रियंगुलता के नीचे शिलापट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही हैं? जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर हैं?
1: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा शीघ्र माला गूंथते।
0: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
0: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्य, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं।
0: हाँ लो ये माला तैयार है।
1: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
0: ये भी कैसा दुर्भाग्य।

0: खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
1: जी, और आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
2: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
1: जी,
2: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
1: जी,
2: बहुत कम मिलता है। आजकल तो मिलता ही नहीं
1: जी,
2: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
1: जी।
2: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
1: ये आपका बड़प्पन है,
2: मतलब अगर मैं नहीं आती

0: आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
1: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
0: अच्छा।
1: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
0: अच्छा।
1: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से।
0: जी।
1: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
0: अच्छा।
1: आए मन्नाडे जी के
0: जी,
1: साथ
0: जी।
1: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
0: जी
1: उनको असिस्ट किया।
0: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजाते हैं।
1: हाँ।
0: जी।
1: तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
0: अरे क्या बात।
1: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
0: जी जी।
1: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ

ने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह। लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज वगैरह लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की सिर्फ

0: काफी कुछ सहयोग नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
1: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी,
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के
1: जानते
2: हमें भी वहाँ ले चलिए ना।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, क्योंकि इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार
1: है ना, संगीतकारों का और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो और वो आशा
0: जैसी
1: जैसी
0: हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल,
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
0: आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी
0: हैं?
1: जी बिल्कुल,
0: पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी,
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर
1: जी,
0: गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको

0: कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी,
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी,
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे, और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए, और मैं भी मान गई। उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है, तो कुदरत ने शायद, हो सकता है कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल,
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहाँ उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा,
0: अब ऐसा हुआ कि 2 ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी,
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देता है
0: और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, 2 लाइंस तो 2 लाइंस, 4 लाइंस तो 4 लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी,
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहाँ समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
0: जी
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिन जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी,
0: है ना, जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर, उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा, अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
0: अच्छा,
1: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
0: जी जी बिल्कुल,
1: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
0: हाँ,
1: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
0: और सुपर डुपर हिट,
1: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे, तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को,
0: जी,
1: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है, अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है ना,
0: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने,
1: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो, अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
0: जी
1: टॉप फ्लोर पे, तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
0: जी,
1: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा गाती हो तुम, सीखती हो, तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ, मैंने कहा अच्छा तो क्या क्या गाती हो, मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो, मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ, तो उन्होंने सारे गम पा पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम, अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
0: अरे
1: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए,
0: जी
1: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
0: अरे वाह।
1: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969,
0: जी जी,
1: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई। मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
0: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
1: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहाँ तक मैं, मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी। वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
0: जी,
1: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
0: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
1: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
0: बहुत सुंदर।
1: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आई,
0: जी
1: सब आए थे
0: जी,
1: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे, हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था, और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके।
0: जी जी,
1: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
0: बहुत सुंदर।
1: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया,
0: जी।
1: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
0: बिल्कुल।
1: ये गा के मैं डांस करती थी, और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
0: जी।
1: तो घर में आते थे, और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे
0: जी।
1: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
0: अच्छा।
1: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उसको, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए, नजराना।
0: वाह,
1: ये एक हमारे गाने बजाने में एक, ये एक तहजीब होती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
0: तो उसको,
1: तो हाँ, एक नजराना देते
0: प्यार
1: हैं
0: का प्रतीक,
1: बिल्कुल
0: प्रतीक,
1: और उनको एक प्रोत्साहन देने
0: जी,
1: के लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
0: अरे वाह।
1: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
0: क्या बात है। तो, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
1: ये आज महसूस होता है,
0: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल। और पता है, मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल।

0: तो अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ मतलब, तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचमदास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते, वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
0: जी,
1: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया जीपीसीपी प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था
0: हाँ,
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर जबान,
1: और यही पूरा था ना
0: हाँ,
1: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस
0: हाँ,
1: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी
1: वही पूरा देखे खेला
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता हाँ, था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी
0: जी।
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त
1: बिल्कुल
0: थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी।
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला।
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका

0: अरे ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं
1: जी
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा।
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
5: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
5: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
5: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
7: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
6: रात्रंदीन आमा युद्धाचा।
8: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। इधर रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विभिन्न विभागों के 143 सफल युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के सभी विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की अधिसूचना के अनुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास और कला संस्कृति तथा खेलकूद विभाग अब मुख्यमंत्री संभालेंगे। राज्य के पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन के अनुसार कल सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगड़ार में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ आज झामुमो ने राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चतरा, खूंटी और कोडरमा सहित विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। खूंटी जिले की रनिया थाना पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक समर्थक ब्रिजेंद्र महतो को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से एक देसी रिवॉल्वर, 2 कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। और जामताड़ा पुलिस ने कर्माटाड़ और सोनबाद गांव से 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 मोबाइल, 13 फर्जी सिम कार्ड

6 एटीएम और 2,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ऐसा होता है ना अक्सर, आपने कभी सोचा नहीं होता, कभी चाहा भी नहीं होता, और चलते चलते जीवन के किसी मोड़ पर एक शख्स कभी आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है, वो जो था बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अजनबी, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो अजनबी हमारी हर दुआ का हिस्सा बन जाता है। हमें कहां पता होता है ये जाना पहचाना सा अपना सा अजनबी हमारी जिंदगी में हौले हौले से दस्तक दे रहा है।

प्यार की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं होती, कभी एक नजर से होती है, कभी एक मुस्कान से, और कभी उस खामोशी से जिसमें दो दिल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल की गहराइयों को समझने के लिए लफ्जों की जरूरत कहाँ, आंखें शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती हैं। बस वक्त लगता है समझने समझाने में।

और फिर उस खामोश इजहार के बाद की वो पहली मुलाकात भी कितनी खास होती है ना। दरअसल उस मुलाकात का इंतजार उससे भी ज्यादा खास। दिल न जाने कितने सपने सजाता है उस पहली मुलाकात के पहले, न जाने कितनी ही मुलाकातें ख्यालों में सोते जागते हो जाती हैं। उसकी आंखों का वो पहला एहसास, उसकी मुस्कान की वो हल्की सी चमक, दिल कहीं संभाल कर रख लेता है। बातें छोटी होती हैं मगर इंतजार लंबा होता चला जाता है। एक एक पल, एक एक दिन सदियों सा लगता।

कैसे हो से शुरू हुई बातचीत कब आज मिले क्यों नहीं तक पहुंच जाती है, और इस दिल को पता ही नहीं चलता कि कब हाल पूछने से हक जताने तक का सफर तय हो गया है। उसके होने से मौसम सुहाने लगने लगते हैं, उसकी आवाज सुनकर दिन थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है, और उसकी खामोशी भी दिल के तार छेड़ देती है।

उसकी मौजूदगी जरूरी लगने लगती है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसकी उदासी दिल को छू जाती है, और उसके बिना गुजरा हुआ दिन जाने क्यों थोड़ा अधूरा सा लगता है। मोहब्बत शायद यही है। फिर एक दिन दिल पूछ बैठता है, क्या यही

आसपास की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन आपके लिए जैसे उस पल में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, आप और वो। एक लंबी सड़क, बारिश की कुछ बूंदें और साथ वो इंसान। घड़ी की सुइयां कब आगे बढ़ गईं खबर नहीं होती, बस उस एक मुस्कान में जैसे पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी दुनिया सिमट आती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही तो है, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने से पहले उसके साथ बिताए एक छोटे से पल को पूरी जिंदगी याद रखना।

आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:35 पर आप सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम ईवाणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वरोजगार आर्थिक विकास का माध्यम इस विषय पर। इसी कार्यक्रम के तहत एक और चर्चा आपसे हम करेंगे जिसका विषय होगा ट्रैफिक नियमों का करें पालन। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शिल्पा शालिनी की वार्ता, विषय होगा गणित का दैनिक जीवन में महत्व। 6:02 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6:30 का समय होगा कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक कृषि कार्य पर। साथ ही आप आज की बात में हम आपसे बातें करेंगे कद्दूवर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण। आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई एक भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे। विषय होगा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इस संबंध में इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत में आप सुन से हम बातें करेंगे मेढ़ों पर वृक्षारोपण।

7:15 पर आप लुत्फ उठा सकेंगे चंद गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि में। कलाकार होंगे मेहंदी हसन। शाम 7:45 आप सुनेंगे विज्ञान जगत। आज का विषय होगा पौधों में परिसंचरण क्रिया। संकलन एवं वाचन प्रीति कुमारी का। 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से और 8:30 का समय होगा विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष का।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से स्पेशल प्रोग्राम 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। 10:20 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

विवाणी सुनने वाले तमाम दोस्तों को परिणीता का नमस्कार। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बातें करेंगे विवाणी कार्यक्रम में स्वरोजगार आर्थिक विकास का माध्यम इस विषय पर। जी हाँ दोस्तों, स्वरोजगार आर्थिक विकास का सच पूछिए तो एक बेहद सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। जब कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का व्यवसाय या उद्यम शुरू करता है तो वह न केवल अपने लिए जीविका कमाता है बल्कि यूं कहे कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सक्रिय योगदान देता है। आर्थिक विकास में स्वरोजगार की भूमिका को अगर यूं देखा जाए तो हम कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से आसानी से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, एक स्वरोजगारी व्यक्ति केवल अपने लिए रोजगार नहीं तलाशता बल्कि यूं कहे कि अपने व्यवसाय के बढ़ने पर अन्य लोगों को भी नौकरी पर रखता है। इस प्रकार वह जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर या फिर प्रोवाइडर बन जाता है, जिसे देश में बेरोजगारी की समस्या जो है सो कम होती है। जी हाँ दोस्तों, स्वरोजगार के तहत ग्रामीण और अर्थ शहरी क्षेत्रों में लोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल, कौशल और संसाधनों का जो है उपयोग करते हैं। तो इससे होता ये है कि स्थानीय स्तर पर व्यापार बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकता है और क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और हर इलाके का समान विकास होता है, एक जैसे विकास होता है। और जब देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती है तो उत्पादन और सेवाओं में इजाफा होता है। यह सीधा योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सच पूछिए दोस्तों तो मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, नए उद्यमी अक्सर बाजार में नई सोच, तकनीक और बेहतर सेवाएं लेकर आते हैं। इस नवाचार के कारण बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर उत्पाद मिलते हैं और देश का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, स्वरोजगार से व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, जिससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ अच्छी आय से परिवारों और का रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर जो है सुधरता है। यह समाज को सच पूछिए तो आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए गारंटी के लोन देना जो है स्वरोजगार के बढ़ावा देने वाली कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन देना होता है, बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, यानी कि नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ को वित्तीय और तकनीकी मदद देता है। साथ ही पीएम स्वनिधि एक योजना है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को अपना काम बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा दी जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम ये कहें कि स्वरोजगार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, यह न केवल आर्थिक मंदी के असर को कम करता है बल्कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है तो सच होगा। और अब बातें आगे भी होंगी दोस्तों, लेकिन आइए इससे पहले हम चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो गीत संगीत हुआ और अब बातें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना न केवल कानूनी रूप से ज़रूरी है बल्कि यह सड़क पर आपकी और दूसरों की जान बचाने का सबसे पक्का तरीका भी है। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले तो मुख्य ट्रैफिक नियम को आप जान लें। सबसे पहले हेलमेट और सीट बेल्ट, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। दूसरी बात दोस्तों कि गति सीमा जो है यानी कि स्पीड लिमिट रखें, यानी कि वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं, तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही दोस्तों ट्रैफिक लाइट यानी सिग्नल का पालन आप ज़रूर करें। ट्रैफिक लाइट और सड़क संकेतों का पूरा सम्मान करें, कभी भी लाल बत्ती पार ना करें। और दोस्तों एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ड्रिंक और ड्राइव से बचें, यानी कि कभी भी शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी न चलाएं, और इससे नियंत्रण और फैसला लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। मोबाइल का इस्तेमाल भी बंद रखें, यानी कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बातें ना करें और न ही मैसेज करें, ध्यान भटकने से बड़ी हादसे हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों दस्तावेज रखें साथ में, जो भी कागज़ है ये ड्राइविंग का, वो ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा और PUC सर्टिफिकेट हमेशा अपने साथ रखें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत में आप ना आए। तो ये तो बातें हुई ट्रैफिक नियमों की पालन करने की दोस्तों, और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं शिल्पा शालिनी की एक वार्ता। विषय है गणित का दैनिक जीवन में

0: जीवन में गणित का अत्यधिक महत्व है। हम कोई भी दैनिक कार्य करते हैं तो उसमें गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाओ, गुना भाग, इन सब का अहम रोल है। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनसे आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित को हम ऐसे विषय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें हम यह जानते भी नहीं हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें किस प्रकार गणित का उपयोग कर रहे हैं। हम दिन की शुरुआत भी गणित से ही करते हैं। कितने बजे सोना है, कितनी देर सोना है और कितने बजे उठना है, सभी में गणित के हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हद तक हम सब गणितज्ञ हैं। अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना ही हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं, किसी खेल के स्कोर का लेखा जोखा करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, भवन बन रहा हो, किसी दिशा में सफ़र कर रहे हों आदि, जब भी हम कोई काम करते हैं हम गणित का उपयोग करते हैं। यदि गणित ना होता तो संख्या, परिमाण, मात्रा आदि निश्चित करने की विधि भी नहीं होती। गणना का भी कोई महत्व नहीं रहता, उसका भी महत्व समाप्त हो जाता और गणना के अभाव में संसार की स्थिति बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाती। गणितीय योग, भाग, गुणा और भाग के अभाव में सामान्य व्यवसायिक व्यवहार भी नहीं हो पाता और विज्ञान और वैज्ञानिक उन्नति भी धरी की धरी रह जाती। यदि गणित नहीं होता तो ज़रूर एक विद्यार्थी किसी जटिल और सूक्ष्म विषय से बच जाता, पर भौतिक विज्ञान का क्या? भौतिक विज्ञान का क्षेत्र तो शून्य ही रह जाता। गणित ना होता तो वेदांगों और शास्त्रों का शीर्ष ही समाप्त हो जाता, क्योंकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांत शास्त्रानाम गणितम मूर्घिण संस्थितम, यानी जैसे मयूरों की शिखा नागों की मणियाँ सिर पर होती हैं, उसी प्रकार वेदांगों के शीर्ष पर गणित थी। यदि गणित ना होता तो मनुष्य और प्रकृति, आंतरिक और बाहरी जगत, विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान में मध्यस्थता नहीं हो पाती, क्योंकि गणित के सिवाय अन्य कोई विषय इस कार्य को नहीं कर सकता। गणित विद्यार्थियों के लिए डरावना ज़रूर है। अधिकतर विद्यार्थी इसमें फेल हो जाते हैं। अगर किसी तरह उत्तीर्णांक प्राप्त कर भी लें, यानी उसमें पास हो भी जाएं, तो उनकी श्रेणी गिर जाती है। लोग समझते हैं कि अगर गणित ना होता तो सामान्य विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर अपने जीवन में उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त कर सकता था, यानी गणित की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गणित विषय ही नहीं होता तो विद्यार्थी का मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि गणित के सवाल मन की एकाग्रता से होते हैं। ज़रा सा ध्यान विचलित हुआ कि समाधान डगमगाया, और अगर समाधान डगमगाया यानी प्रश्न का उत्तर भी गलत हो जाएगा। अगर गणित नहीं होता तो विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का भी ह्रास हो जाता और चिंता शक्ति की क्षीणता से जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाती। गणित की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसकी ज़रूरत को हम इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे किसी अनपढ़ के लिए भी गणित समझना सरल भी है और ज़रूरी भी है। मान लीजिए हमने एक रिक्शा लिया है कहीं किसी जगह जाने के लिए। जब हम किसी निश्चित दूरी का भाड़ा पूछते हैं तो वो हमें एक निश्चित रकम बताता है, और जैसे ही हम अपनी दूरी बढ़ाते हैं वो भी अपनी रकम, अपना भाड़ा बढ़ा देता है। अगर हम किसी कम दूरी लेकिन चढ़ान वाली जगह का भाड़ा पूछेंगे तो वह अधिक बताएगा। कारण पूछने पर उसका जवाब होगा कि चढ़ाई के कारण भाड़ा अधिक है, यानी उसमें उसे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अनपढ़ होने के बावजूद उस रिक्शे वाले को हाइट, डिस्टेंस, वर्क आदि का ज्ञान भी है और उसकी ज़रूरत भी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम सभी गणितज्ञ हैं, क्योंकि हर रोज़ हम गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में और रोज़मर्रा के कार्यों में गणित की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगी कि गणित से डरे नहीं, घबराए नहीं। यह हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। जन्म के साथ ही हम गणित से जुड़ जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें गणित के साथ जीना सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों अभी आपने सुना शिल्पा शालिनी की पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय था गणित का दैनिक जीवन में महत्व। और अब इस वार्ता के बाद आइए चलते हैं एक बार फिर से मनोरंजन की ओर।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम ईवाणी, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रति

के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गांई जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को शाम 4 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री को आज पेश होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण अदालत ने उन्हें वर्चुअली जुड़ने की छूट के साथ 21 सितंबर तक का समय दिया है। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर एक्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि कोयला और आयरन ओर पर अतिरिक्त कर लगाने से राज्य में उद्योगों की लागत बढ़ रही है और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। धनबाद समाहरणालय में अनुसंधान में साइंटिफिक और आईटी विषयों पर 4 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी इंस्पेक्टर और डीएसपी शामिल हुए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में लोहरदगा की जल सहिया नीता लकड़ा झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे 23 सितंबर को राज्य में जल संरक्षण और प्रबंधन के अपने जमीनी अनुभवों को साझा करेंगी। लोहरदगा के एमएलए महिला कॉलेज में आज कर्मा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। प्राचार्य स्नेह कुमार ने कर्मा को प्रकृति और पर्यावरण रक्षा का अनुपम त्योहार बताया। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। चर्चा है पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाए। सूत्रधार है मनीष कुमार पांडे और कोरेनलियस पिंच। प्रस्तुति प्रभु।

0: किसान वाणी।
1: परती जमीन के खेती लायक बनाऊ, उपज के बढ़ाऊ।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब भाई बहन मन के मनीष भाई कर जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
1: जोहार जोहार मनीष भाई।

0: शुद्धता झलकती थी। पार्टी भी तंदुरुस्त और लोग
1: भी। पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: और बताओ करण भाई, राउर कर हाल समाचार कैसन है? राउरे मुरुक आइज खुश दिशा थी, खुशी का राइज का है।
5: अरे राउरे तिसन कह देली, मोर हाल समाचार नगदी नगद है मनीष भाई। और खुशी कर कहले कि का कारण है, तो खुशी ले कारण तो खोजे पड़ेला। आज कल कर जे जमाना है, जिंदगी है नहीं, उकर में बहुत दुखे दुख दिसेला, दुखे दुख भरल लागेला। तो देखो कोनो कोनो मौका में खुदे हूँ हंसे पड़ेला, हंस चलीला, यही तेर दुख खुश रहे चाहिए।
4: एकदम रौरे नगद कहली, अपने में मस्त रहो और खुश रहो, और खुशी नहीं लागत है बोले गीत गोविंद कर सहारा हूँ ले सकीला।
5: हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम सुपट कहली। मनोरंजन ले तो देखो गीत गोविंद गोटे बढ़िया साधन है, और कर से हमरे कर जीव जहान हूँ, खुश हो जाएला और मन हरियर हो जाएला। हाँ तो मनीष भाई देखो, आज कल तो बन पातर में देखब तो सब बट हरियर हरियर दिशत है, धान कर खेती मन लहलहात है, डाड़ में हूँ बारी में हूँ खेती आए है नी, और सब बट हरियरी हरियर दिशत है, और इसन में तो मन एकदम खुश हो जाएला, बहुत बढ़िया लागेला। और यो गोटे खुशी कर कारण है के मनीष भाई।
4: हरियाली रहेला तो हमरे मन कर मन हूँ हरियर रहेला, और खुशी में भेटाएला ऊपर से का कहेला।
5: हाँ हाँ एकदम, और भीतरे से खुश रहले बढ़िया लागेला, लेकिन खुश रह के देखो जीव जहान कर बढ़िया रहे बहुत जरूरी है। तो से चलते आपन जे तबियत है, आपन जीव जहान है, उके बढ़िया रखे के चाहिए। इकर ले देखो हमरे कर जे भात तियन है, पानी है, वो बढ़िया होए के चाहिए, पौष्टिक आहार खाए के चाहिए, और सफा सफा पानी और डबकाल पानी जे रहेला उके पिए के चाहिए। अगर ताता ताता नहीं पिए थे तो डबकाल पानी के उके ठौड़ करो और पियो।
4: और करण भाई इकर संगे संगे हमरे मन के शारीरिक श्रम हो करे के चाहिए, का कहेला?
5: देखो खेती बाड़ी कर काम में तो मनीष भाई श्रम करे के पड़ेला है, मेहनत करे के पड़ेला, और इकर में देखो शरीर के खटवा के पड़ेला, तो इकर तो कोनो उपाय नखे। मुदा देखो नी बहुत एकन परती जमीन रहेला, तो उकर में हूँ खेती हमरे के करे के चाहिए।
4: एकदम जे परती भूमि है उकर में हमरे मन के खेती बाड़ी करे के चाहिए, उके मेहनत करके जोत कोड़ के उके खेती लायक बनाए के चाहिए परती भूमि के, का कहिला?
5: हाँ बहुत एकन परती सन छोड़ देवे ना, और बहुत साल तक खेती हूँ नहीं करे ना, और परती भूमि छोड़ ले देखो आज कल काले के खेत मन हूँ कम हुआ थे, तो परती जे जमीन है जे खेत है उकर में खेती करब, चाहे उकर में बाड़ी वाला जे साग सब्जी है उके लगाब, तो उकर से उपज आवी तो दूगो कचिया आवी नहीं।
4: एकदम हमरे मन के जे परती जमीन है उके खेती बाड़ी बनाए के चाहिए, इकर ले हमरे मन के जे परती जमीन है उके गहराई से जोतवाए के चाहिए, और गहराई से जोतवाले जे माटी है वो माटी उपज लायक बन जाएला।
5: हाँ तो देखो उके अगर हमरे मन घरी घरी जोतब और उके दो तीन धाव चार धाव जोतब हो, तो देखो उकर में गहराई से जुताई हो जाएला, और उकर में हमरे मन के गोबर माइन मन देवे के चाहिए, और अगर माटी कैसन है तो चूना मन के लगाए के चाहिए।
4: एकदम नगद कहली करण भाई रवरे, और हमरे मन के जे परती जमीन है उके खेती बाड़ी लायक बनाए के लिए पानी कर हूँ जोगाड़ रखे के चाहिए। करण भाई कर संगे संगे हमरे मन के जे माटी कर जांच है उके हूँ करवाए के चाहिए, काले की इकर से हमरे मन के पता चलेला कि माटी में का पोषक तत्व है और का कमी है।
5: देखो माटी में 16 बरन कर जे पोषक तत्व रहेला, तो उकर में हमरे मन नहीं जाने के पारेला नहीं कि का का आहे, का कमी आहे, का बेसी आहे, का के ऊपरे से देवे का है और का खुदे
4: माटी में है,
5: तो से चलते जांच करवा ले तो बहुत बढ़िया है, और जांच करवाए के चाहिए हर तीन साल में, अपन खेत कर जे माटी है उके जांच करवाए के चाहिए। माटी कर स्वास्थ्य के जानब तबे तू कर में का खेती करे के और कैसन उपज आवी से केहू जान सकेला, तो जरूर माटी कर जांच करवाए के चाहिए।
4: तो करण भाई आगे और का जुगाड़ है उके बताऊ?
5: तो देखो आज हमरे मन आज कर जे बात है उकर में राम तिल, मतलब जे के हमरे सरगुजा कहिला, और हमरे तो हमर गांव घर बटी के जटंगी कर खेती कहिला है नी, तो आज जटंगी कर खेती कर बारे में हमरे मन जानब, जटंगी कर खेती कैसन करल जाएला, और उकर में कोनो रोग लाग जाए तो उकर कैसन उपचार करे के, और रोग ना लागो उकर ले का करे के, इकर बारे में जानब बताबे डॉक्टर शांति कुरली। इकर पाछे हमरे गोटे के नागपुरी गीत सुनब तानिश अख्तर और संगी मन कर गावल, नवा उम्र कर नवा फसल में गोटे के गाय पोसेक वाला किसान है भरत प्रसाद, उनकर से करल गोइठ के सुनब। तो मनीष भाई देखो रावरे जटनी कर तेल खाई ही कि नहीं?

0: मैं तो नहीं खाई हूँ रउरे बुझाते रउरे खाई ही जटनी कर तेल के नी
1: बाप रे जटनी कर तेल कर जी पकवान बनेला तो स्वाद हमरे तो छनका होकर खाईला विशेष कर जे माघ कर जे परब कर जे रोटी है पकवान है वो यही जटनी तेल से हमरे मन पकाईला बहुत स्वाद और बहुत बढ़िया लागेला केस मन में हुई के हमरे लगाईला जटनी तेल के मनीष और देखो जटनी कर जे खेती है नी कर से बढ़िया कचिया हूँ मिलेला खाली ई खाए के लिए काम नहीं आवेला इकर से किसान भाई बहनों के कचिया हूँ भेटाएला।
0: तो चलो इकरे बारे में जे जटनी कर खेती है उके कातरी हमरे कर सकीला और इकर में रोग लागी होले कातर दवाई कर सकीला इकर बारे में जानीला बताते हैं डॉक्टर शांति कुरली और इनकर से गोठियाई है कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: हाँ तो चलो सुनीला जटनी के देखो रामतिल और सरगुजाहू कहे ना।
2: किसान साथियों आज की चर्चा एक ऐसी फसल पर है जिसे हम रामतिल या नाइजर के नाम से जानते हैं और इसको हम सरगुजा के भी नाम से जानते हैं। यह कम लागत में कम पानी और कम उपजाऊ जमीन पर भी बहुत अच्छा से होता है और इसका तेल सेहत के लिए तो वरदान है ही, बाजार में इसकी मांग भी हमेशा तेज रहती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर शांति कुरली, कन्या वैज्ञानिक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची। डॉक्टर शांति आपको नमस्कार है।
3: और सभी किसान भाइयों और बहनों को भी मेरा नमस्कार।
2: डॉक्टर शांति आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रामतिल क्या है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है।
3: रामतिल एक तिलहन फसल है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जो सूरजमुखी का फूल होता है जो फसल होता है वो उसी का ही प्रजाति है। ये छोटा रूप है इसका, इसे हम सरगुजा भी कहते हैं। इसका तेल जो होता है जिस तरह हम लोग सरसों का तेल हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं इसे भी हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में हम लोग मालिश के लिए, बच्चों की मालिश के लिए या बड़ों के लिए भी हम लोग इसे उपयोग करते हैं, उसी तरह इस सरगुजे के तेल को भी उपयोग करते हैं और खान पान में भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे कारखानों में जैसे कि साबुन जहां बनता है और जहां ग्रीस बनता है, पेंट बनता है, ऐसे बहुत सारे कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
2: इसकी खेती के लिए किस तरह के मौसम और भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे किसान भाई इसकी खेतों की तैयारी कैसे करें?
3: ये हमारा जो सरगुजा का फसल होता है बहुत तरह के, जैसे हमारे खरीफ फसल मुख्यतः इसके लिए हम लोग अपना खरीफ फसल ही से बोलते हैं, लेकिन ये जो है बहुत तरह की मिट्टियों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये उगता है। जिस तरह की हम लोग का बालुई मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी होता है या तो कंकड़ वाला जो जमीन होता है उसमें भी ये बहुत अच्छे से अपना फसल देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग दो या तीन बार इसको जुताई कर लें, उसके बाद उसके ऊपर पाटा चला लें ताकि वो जितना भी हम लोग का बड़ा जो कंकड़ पत्थर है या तो फिर जो मिट्टी है वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाए और भुरभुरा हो जाए। उसके बाद हम लोग उसमें जो हमारा गोबर का खाद होता है उसका 10 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग उसको डाल के उसको छोड़ दें। और उसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग लाइन विधि से करते हैं तो इसको लाइन विधि के लिए हमारा जो बीज का मात्रा होता है 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से आता है और अगर हम छिड़काव विधि से करते हैं तो ये 8 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर की दर से आता है। और बुआई करें उससे पहले हम लोग को जरूरी है कि हम लोग इसका बीज उपचार जरूर कर लें।
2: जी जी, तो रामतिल की मुख्य किस्मों और पौधों के बीज कितनी दूरी रखनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं और इसके किस्मों के बारे में भी बताएं।
3: ये कम से कम 40% तक ये तेल पैदावार करता है। जब हम एक नई किस्में जो हमारे बिरसा एग्रीकल्चर के द्वारा जो बनाया गया है उसके अलावा दूसरे और भी हमारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा बनाया गया है तो पहला जो हमारा किस्म है बिरसा नाइजर 1 और इसकी जो अवधि होती है हमारी 90 से 100 दिनों तक में ये पक के तैयार हो जाती है। जो तेल की मात्रा होती है 42% इसमें पैदावार मिलती है और इसका जो पैदावार होता है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार मिलती है। दूसरा हमारा जो किस्म है बिरसा नाइजर 2, इसकी अवधि है हमारे 100 दिनों से कम की है, उसी में हमारा पक्के तैयार हो जाता है और इसकी जो तेल की मात्रा 40% तक होती है और इसकी पैदावार जो होती है 7 से 8 क्विंटल प्रति

0: हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। तीसरा जो हमारा किस्म है वो बिरसा नाइजर 3, ये हमारे 105 दिन तक का किस्म है और इसकी पैदावार 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर तक है। उसके बाद इसकी जो तिलहन की जो क्षमता है, तेल जो हमारा निकलता है वो 40% होता है। सबसे ज्यादा जो हमारा बिरसा नाइजर 3 है ये सूखी जगह, मतलब जब हमारा पानी बहुत कम हो जाता है तो उसको भी ये सहन कर लेता है। बुआई के समय हम किस तरह से इसकी जो दूरी होनी चाहिए, कतार से कतार तक की दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर हम इसे अगस्त के महीने में लगा रहे हैं। अगर सितंबर माह में लगा रहे हैं तो इसकी पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की रहेगी और जो कतार की कतारी वही 30 सेंटीमीटर की रहेगी।
1: रामतिल या सरगुजा, तो इसमें कितने तरह के कीट लगते हैं या कौन कौन से कीट लगते हैं इसमें?
0: इसमें हमारे बहुत ज्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कीट भी हैं अगर ये एक बार लग जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है पत्ते खाने वाले और बीज खाने वाले और दूसरे हैं जो रस चूसने वाले कीट। तो सबसे पहला हम लोग का जो है वो सरगुजा का टोडी की मक्खी, इसको हम लोग इंग्लिश में कैप्सूल फ्लाई कहते हैं। दूसरा का जो है बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको हम लोग बिहार बालों वाला सुंडी कहते हैं। उसके बाद तंबाकू की सुंडी है ना, ये सब जो है हमारे पत्ते और बीज खाने वाले कीट हो गए। उसके अलावा हमारा जो रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो एक है माहू है और एक गंधी कीड़ा होता है। उसके बाद है लीफ होफर, जिसे हम हरा तेला कहते हैं
1: जी। इस फसल में अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह के कीट हमला करते हैं और हमारे किसान भाई उनकी पहचान कैसे करें?
0: जो हमारे रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो जब पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, पौधा जब निकलता है तो उसी समय से वो लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो रस चूसने वाले कीट होते हैं मुलायम पत्तों को, मुलायम पौधे के जितने भी ब्रांचेस है उसको वो चूसते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो कीट है टोडी मक्खी है, इसका जो छोटा कीट होता है बीज के अंदर का पूरा गुदा खा लेता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है। उसके बाद हमारा जो है बिहार बालों वाला सुंडी जो होता है ये पूरी तरह से पत्तों को खा जाता है, और ये हम जब खेत में जाते हैं तो पौधे के जो पत्तों को देखते हैं बहुत ज्यादा इधर उधर से छेद किया हुआ जैसा लगता है, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो क्या है, ये एक सुंडी का प्रकोप है। जब हम लोग देखते हैं कि कुछ पत्ता है जालीदार हो जाता है तो वो भी हमारे जो है ये सुंडी की वजह से ही होता है। ये जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं ये कोमल पत्तियों में टहनियों में इसका रस चूसते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और इस तरह से वो मुरझा जाते हैं और आगे वो पैदावार नहीं दे पाते हैं।
1: तो इसमें समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें?
0: हमारा सबसे पहले तो है बीज जब लगाते हैं उसी समय बीज का उपचार कर लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पहला जो कीट आता है जो हमारा टोडी मक्खी है या तो फिर जो सुंडी है, उनके लिए हम लोग क्विनालफोस 20 EC जो कि हम लोग 1.5 ml पर लीटर ऑफ। हमारे जो पतंगे वाले कीड़े होते हैं उनके लिए हम लोग सबसे पहले जो है जितने भी टहनी को वो खा जाते हैं या तो पत्तियों को खा जाते हैं, वैसे जो पत्तियां हैं या तो टहनी हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और उसको अलग उसको जला के हटा लेंगे, क्योंकि अगर ये पौधों में ही रहेंगे कीट का जो इनका लाइफ साइकिल चलता है, या तो अंडा हुआ इसका लार्वा है ये इसी में रह जाते हैं तो आगे फिर नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए इस तरह के पहले से जो टहनियां हैं उन सबको हटा लेंगे।
1: रामतिल की खेती के बारे में विस्तार से समझाया, अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसकी कटाई और भंडारण कैसे किया जाता है?
0: जिस तरह हम लोग सरसों हुआ या सूरजमुखी का फसल होता है उसी तरह से ये भी हमारा जब फली जो होता है सूख जाता है, हल्का भूरा हो जाता है, उसका थोड़ा काला पड़ने लगता है, उसी समय हम इसकी भी कटाई कर लेते हैं और इसको धूप में सुखा लेते हैं, तब इसका ये सफाई कर लेते हैं
1: जी।
0: उसके बाद भंडारण में हमारा क्या होता है, जब भंडारण करते हैं तो 8% इसका नमी होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो कीट पतंगों का आक्रमण हमारा भंडारण में भी हो सकता है। जिसमें हम लोग भंडारण कर रहे हैं जैसे डब्बा हुआ या तो कोई बड़ा टीन हुआ, तो उसका हम लोग देखे ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग का ढक्कन होता है उसका वो बहुत हम लोग को टाइट रखना पड़ेगा, अच्छे से

0: वो, ताकि वो डब्बे में पूरी तरह से फिक्स हो जाए, ताकि उसमें हम लोग का कीट पनपे नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति कुरली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को राम तिल, जिसे हम सरगुजा के भी नाम से जानते हैं, इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों का प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई आपकी बातों को सुनकर लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मन राम तिल मतलब सरगुजा कर खेती का तैर कर सकीला और उकर में रोग लागले का दवाई दे सकीला, का दवाई देवे के चाहिए, इकर बारे में जान ली। इके बतात रहे डॉक्टर शांति कुरली और इनकर से गोठियाई रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: बढ़िया जानकारी रहे मनीष भाई। देखो जटंगी कर जे खेती है ओके किसान भाई मन के करे के चाहिए। हालांकि अगस्त महीना में बेसी किसान मन कर देवे ना, लेकिन ई महीना में हूँ कुछ कुछ जटंगी कर खेती होवेला तो किसान भाई बहन मन लगाई सके ना। और देखो इकर से गीत हूँ नागपुरी में है, जटंगी जे फूल गेलक दादा झका झूम सलाय सलाय है नी।
2: तो मुरुख गीत लागलक।
3: सही बात है। तो देखो जटंगी फूल कर गीत तो है नागपुरी में मनीष भाई, तो गीत कर बात तो शुरू हो जाए है, तो गीत सुनील का
2: चलो तभी तानिश अख्तर और संगी मन कर गावल नागपुरी गीत के सुन ले।
3: चलो सुनील।

0: भाई बहन मन एखन हमरे मन तानिस अख्तर और संगी मनकर गावल ई नागपुरी गीत के सुनली।
1: बड़ा संदेश भरल गीत रहे। छुआ पुता मन के अपन माए बाप कर देखू, ध्यान रखे चाहिए, बुढ़ापा का सहारा बने के चाहिए। मुदा ई गीत में देखू कुछ कुछ छुआ मन माए बाप कर सहारा नहीं बने ना, बुढ़ापा में छोड़ देवे ना, तो वो दर्द भरा बयां रहे से ई गीत में झलकत रहे। मनीष भाई, छुआ पुता मन के उसन नहीं होवे के है नी। तो चलो अखन हमरे मन गोटे के गाय जे पोसे ना भरत प्रसाद, उनकर से करल गोइट के सुन लेवे ले। तो बहुत एकन किसान मन आपन दोसर काम कर संगे हूँ, गाय मन पोसे ना और कचिया कमाए ना, वही तरिया है भरत प्रसाद
0: और इनकर से रावरे गोठिया ही।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक गाय पालक है, चलिए उनसे जानते हैं कि गाय पालन में वो कब से है और कैसे उनका रुझान हुआ कि गाय पालन किया जाए और ये व्यवसायिक स्तर पर गाय पालन करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दें।
3: हम आरा गेट के रहने वाले हैं।
2: आपका नाम?
3: भरत प्रसाद।
2: भरत प्रसाद भाई, आप आरा गेट के रहने वाले हैं, शुरू से ही गाय पालन कर रहे हैं या कुछ और भी करते हैं?
3: ऐसे हमको सर्विस है प्राइवेट सेक्टर में,
2: उसके साथ साथ आप गाय पालन करते हैं।
3: हाँ।
2: तो बताइए, गाय पालन की दिशा में आपका रुझान कैसे हुआ, क्यों आप गाय पालने का सोचे?
3: गाय देखिए, हम लोग पुराने किसान के बाल बच्चे हैं, हम लोग घर पर भी पहले जानवर का व्यवसाय था, तो यहाँ पर भी आए तो हम लोग सोचे कि जगह है, यहाँ पर ही कुछ गाय रखा जाए तो उससे कुछ इनकम भी होगा, अपना खाने पीने के लिए भी साधन हो जाएगा।
2: अभी आपके पास कितनी गाय है?
3: दो गाय दूध देने वाली है, ऐसे बच्चा बच्ची और है।
2: अच्छा, तो ये कौन सी गाय है, जर्सी गाय है कि कौन सी नस्ल की गाय है?
3: ऑस्ट्रेलियन सर है, जर्सी।
2: तो इसी नस्ल का क्यों आपने चुनाव किया?
3: ये गाय का दूध ज्यादा होता है, देहाती गाय का दूध कम होता है।
2: हाँ, तो कोई बताए थे कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल को लेना है?
3: यहाँ पर तो यही गाय अधिकांश आदमी लोग पालते हैं, तो इसे व्यवसाय के दृष्टि से दूध ज्यादा देती है, देहाती गाय में तो उतना दूध है नहीं।
2: ये गाय सफल है और बढ़िया दूध देती है?
3: हाँ, ठीक है। ये सब है कि मतलब बाहर का गाय नहीं है, सब यहाँ का है, हवा पानी खाई लाए, ये लोग में रोग बलाई कम आता है।
2: अच्छा अच्छा। हाँ,
3: बाहर के जो गाय आता है पंजाब से लाता है या बिहार से लाता है, राजस्थान कहीं से भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी सेट करने में टाइम लगता है, बहुत नुकसान भी हो जाता है,
2: बीमारी को बहुत नहीं झेल पाती है गाय और मौसम के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं करती।
3: हाँ, और यहाँ पर क्या है कि सब हवा पानी अपना बर्दाश्त किया हुआ है, ये लोग अपना सही सलामत रह जाता है।
2: जी, ये बहुत बढ़िया। थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को कि गाय पालन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग गाय पालन में सक्सेस नहीं करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि पूंजी ज्यादा लग जा रहा है, दूध उतना नहीं आ रहा है।
3: पूंजी के हिसाब से दूध तो ठीक है, अब खाना मिलेगा तो दूध तो करेगा ही, लेकिन मेन चीज है कि अब दूध का बिक्री हो, सा हो, रेट मिले।
2: अच्छा,
3: अब जैसे मान लीजिए इधर के रेट कुछ और है, टाउन में जाएगा तो रेट कुछ और हो जाएगा।
2: तो क्या ध्यान देना चाहिए गाय पालन में?
3: गाय को ध्यान क्या है? मतलब खाना पीना पर उसको अच्छी तरह से देना है, दूध तो देवे करिए, जब खाएगी तो दूध क्यों नहीं देगी। थोड़ा सा उसको बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहना है, रोग बलाई के लिए क्या कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से दिखाइए, वो अपना उपचार अपना करेंगे।
2: कहा जाता है कि मवेशी पशुओं को कम से कम साल में दो बार टीका जरूर दिलाना चाहिए।
3: हाँ, तो एक पहले खुड़ा करके आता था, तो वो लोग को हम लोग टीका दिलवाते रहते हैं छह छह महीना पर।
2: गाय की एक समस्या बीमारी क्या है तो खुरहा चपका का, ये बड़ी समस्या होती है।
3: तो उसका अभी तो नहीं है, दो साल पहले आया था तो हम ही को दो गो गाय नुकसान हो गया था, लेकिन उस समय से हम लोग रेगुलर है, छह महीना पर टीका लगाते हैं।
2: अच्छा।
3: तो दो साल से अभी तो सही सलामत है।
2: अच्छा, इनके आहार व्यवस्था पे बारे थोड़ा बताइए, आहार कैसे इसका होना चाहिए, क्या क्या खिलाते हैं आप लोग?
3: हरा घास है, उसके बाद हम लोग जो पुआल का बिचाली होता है वो देते हैं, चोकर देते हैं और शरबत पिलाते हैं, जैसे बादाम खल्ली हो गया एक फीट करके आता है वो है, राहड़ भूसी है, ये सबको मतलब फूलने के लिए दे देते हैं, खाना खिला के बाद उसको पिला देते हैं।
2: और इसका घर कैसा होना चाहिए? बहुत ही पशु का घर कहते हैं कि चलो वो तो पशु है जैसे तैसे उसका घर।
3: जी नहीं, घर के तो बहुत अच्छी सी साफ सफाई रखना चाहिए, ऐसे तो हम लोग जैसा अपना किए हुए हैं, पक्का कर दिए हैं, नीचे में ढलाई कर दिए हैं, लेकिन वो जानवर को दिक्कत है, फिसलता है, बलस उनको बैठने में घुटना में फूट जाता है, क्योंकि पूरा जब उठता है या बैठता है तो ठेहुना पर ही लोड पड़ता है, ये लेकर के वो लोग को दिया लेकिन वो लोग को कच्चा ही रहे, थोड़ा साफ सफाई रहना चाहिए।
2: हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर वो गाय पालन करना चाहते हैं तो वो कहाँ से संपर्क करके गाय लें और थोड़ा क्या ध्यान दें?
3: यदि कोई नया हिस्सा कोई लेने वाले हैं जनता में, मतलब घूम करके देहाती साइड में ही अपना गाय लें तो अच्छा रहेगा, बाहर से गाय नहीं लावे, बाजार के गाय नहीं लें, क्यों बाजार की गाय में बहुत तरह की हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, पानी सेट नहीं करता है तो उसको बेचारा को पूंजी डूब जाता है। तो यदि कोई ऐसा नया व्यवसाय अपनाना चाहते हैं तो लोकल गाय ले लें, और खान पीना पर यही सब है, कुट्टी चोकर दें अपना जैसा बने, तो बादाम खल्ली राहड़ भूसी एक बेसन आता है ये सब मिला जुला के अपना है दें, दूध करेगी। 6 महीना पर टीका है जो चपका खुड़ा का है जो दिलवा देंगे तो वंचित रहेंगे।
2: जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इस बातचीत का लाभ उठाएंगे। आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: धन्यवाद।
0: तो भाई बहन मन एखन हमरे भरत प्रसाद से करल गोइट के सुन ली गाय पोसे न और इनकर से रौरे गोठिया रही।
1: और देखो बहुत एक बढ़िया जानकारी दे लें, नौकरी हूँ करें तो मैं गाय पोसे ना, तो हमरे मन के बेरा नखे बेरा नखे कही के आपन जिंदगी के बर्बाद नहीं करे के है नी,
0: एकदम
1: बेरा निकसा तो जरूर निकसी। ये देखो बेरा निकसाई के गाय पोसे ना और दूध बेच के कचिया हूँ कमाते हैं।
0: तो हमरे मन के हूँ मेहनत करे चाहिए और ऐसे कोनो कोनो काम करके कचिया कमाए चाहिए।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो करण भाई, गोठियाते तो बेरा कर पते नहीं चलेला। देखो अब बेरो सिरात है, तो किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा एहजक सिरात है।
7: मनीष भाई, गोठिया कर मन तो करेला, किसान भाई भी मन से गोठियाते रहती सन लागेला है नी। मुद्दा का करो, सब काम के तो बेरा से करे पड़ेला। तो
8: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप लीजिए प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले आपसे बातें करेंगे समसामयिक कृषि कार्य पर। साथ ही आपसे आज की बात में आज हम बातें करेंगे कद्दूवर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण पर। और इसी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता भी आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई। विषय होगा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत में हम आपसे बातें करेंगे मेढ़ों पर वृक्षारोपण पर। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं, आपसे बातें करते हैं समसामयिक कृषि कार्य पर। जी हाँ किसान भाइयों, समसामयिक कृषि कार्य का सीधा मतलब हम आपको बता दें कि मौजूदा महीने और मौसम के अनुसार खेतों में किए जाने वाले ज़रूरी कामों से है। चूँकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसलिए इस समय खरीफ फसलों की देखभाल और आगामी रबी फसलों की तैयारी सबसे ज़रूरी कृषि कार्य है। किसान भाइयों, धान की फसल खरीफ फसलों में, इस समय धान की फसल में बालियां निकलने या दाना बनने का चरण होता है। अगर बारिश न हो तो खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई भी करना पड़ता है, और अगर ऐसा है तो आप सिंचाई भी हल्की सिंचाई भी करें। साथ ही किसान भाइयों, फसल में गंधी कीट और तना छेदक के प्रकोप की निगरानी करें। यदि कीट दिखे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। एक बात और किसान भाइयों कि मक्का में फॉल आर्मीवर्म और तना छेदक कीट से बचाव के लिए गाभा में दवा डालें। अरहर के खेतों में पानी जमा न होने दें और जल निकासी का अच्छा प्रबंध रखें। किसान भाइयों, सितंबर का दूसरा पखवाड़ा तोरिया अगेती सरसों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। खेत की 2-3 जुताई कर मिट्टी भुरभुरी बना लें और उन्नत किस्मों की बुआई शुरू कर दें, यानी कि तोरिया और सरसों की। आलू की खेती के लिए अगेती आलू यानी बरसाती आलू की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और कंद का उपचार करके रोपाई करें। सर्दियों के मौसमी सब्जियों से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए सितंबर का महीना सबसे उत्तम है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप क्या करें कि नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें, यानी फूल गोभी जैसे पूसा सुक्ती, बंद गोभी गोल्डन एकर, टमाटर बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार करने का यह सबसे सही समय है। खेत में सीधे बोई जाने वाली सब्जियां जैसे पालक पूसा भारती ले और मूली गाजर मेथी और धनिया की बुनाई शुरू की जा सकती है अभी के समय में, तो आप इसका बुनाई शुरू कर दें। रही बात बागवानी और अन्य कार्य की, तो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि फलदार पौधे जैसे कि व्यसक आम और नींबू वर्गीय पौधों में मानसून खत्म होने से के तुरंत बाद बची हुई उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश की मात्रा डालें, और रोगों से बचाव के लिए नींबू प्रजाति के पौधों में कैंकर या डाइवैक रोग दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तो इस तरह से अपनी देख रेख में अगर आप फसल करते हैं किसान भाइयों, तो निश्चित ही आपको लाभ ही लाभ होगा। और अब बातें आज की बात में कद्दूवर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण पर। जी हाँ किसान भाइयों, कद्दूवर्गीय सब्जियों जैसे कि लौकी तरोई खीरा कद्दू करेला और तरबूज वगैरह वगैरह में कीटों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो इन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीट और उनके नियंत्रण के उपाय हम आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, आप से साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुख्य कीट और उनके लक्षण हम आपको बता दें। लाल कद्दू बीटल, यह जो है यह चमकीले लाल नारंगी का रंग का छोटा कीड़ा होता है। यह शुरुआती अवस्था में तो पौधों की पत्तियों को खाकर उनमें छेद कर देता है, जिसमें पौधा जो है सो सूख जाता है। उसी तरह एक फल मक्खी हुआ यानी फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है, यह सबसे खतरनाक कीट है। मक्खी छोटे फलों के अंदर अंडे देती है और अंडे से निकलने वाली सूड़ियाँ यानी कि मगेट्स जिसको बोला जाता है, फल को अंदर से खाती है, जिससे फल सड़कर गिर जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसी तरह से एक और है सफ़ेद मक्खी और एफिड, जी हाँ किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी और एफिड जो है ये छोटे कीट पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके कारण पत्तियाँ पीली होकर मुड़ जाती हैं और यह जो है कीट मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियाँ भी फैलाते हैं। उसी तरह पत्ती सुरंगक भी एक जो है कीट जो है यह कीट जो है पत्तियों के अंदर सुरंग जैसी सफ़ेद धारियां बना देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रही बात अब कीट नियंत्रण के उपाय की, तो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि आप अपनी सुविधा और खेती के तरीके के अनुसार जैविक या रासायनिक तरीका चुन सकते हैं। जैविक के और एकीकृत नियंत्रण में आपको बता दें कि यह तरीका पर्यावरण के लिए सुरक्षित और लागत कम आता है, कम खर्च होता है। जैसे कि सबसे पहले तो नीम का तेल हो गया, इसे बनाने के लिए आप रस चूसने वाले कीटों और बीटल के बचाव के लिए 5 मिलीलीटर नीम का प्रति लीटर पानी में थोड़े से सर्फ या लिक्विड सोप के साथ मिलाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करें। उसी तरह फेरोमोन ट्रैप हो गया किसान भाइयों, तो इसके लिए जो है आप क्या करें कि फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ 4 से 5 क्यूलर फेरोमोन ट्रैप लगाए। यह नर मक्खियों को फंसाकर उनकी आबादी रोक देता है। फिर पीले और नीले स्टिकी कार्ड जो है सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स और एफिड्स को आकर्षित करने के लिए खेत में जगह जगह पीले और चिपचिपे कार्ड लगाए। घरेलू नुस्खा भी है किसान भाइयों, जो हम आपको बता दें कि 200 ग्राम तीखी मिर्च और 200 ग्राम लहसुन का पेस्ट बनाकर 10 लीटर पानी में मिलाएं और छान कर छिड़काव करें। ये तो हो गया जैविक के बारे में, जैविक रोग नियंत्रण के लिए। अब हम आपको रासायनिक नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं कि यदि कीटों का हमला बहुत ज़्यादा हो और जैविक तरीकों से काबू ना आ रहा हो तो आप रासायनिक नियंत्रण कर उसका जो है प्रयोग करें। जैसे कि लाल जो है लाल कद्दू बीटल के लिए आप पौधा छोटे होने पर उसमें इमिडा क्लोप्रिड की 0.5 मिली लीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और इसका छिड़काव करें। फल मक्खी के लिए जब फूल आने लगे तब उसके बाद 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा छिड़कने के 5-7 दिनों तक फल न तोड़े। और रस चूसने वाला कीटों में भी आप इसी तरह से थोमोथोक्सम का उपयोग कर सकते हैं, इसका स्प्रे करें। और कुछ खास बातें आपको ध्यान देना होगा किसान भाइयों, जैसे कि सबसे पहले तो हर साल एक ही खेत में कद्दू वर्गीय फसलें न लगाएं, यानी फसल चक्र को अपनाएं जिसे क्रॉप रोटेशन भी बोला जाता है। और उसी तरह से प्रभावित फलों को नष्ट करना, फल मक्खी से प्रभावित सड़े हुए फलों को तोड़कर ज़मीन में गहरा दबा दें, उन्हें खेत में खुला न छोड़े। दवा का समय जो है रासायनिक दवाओं का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें ताकि परागण करने वाली मधुमक्खियों को नुकसान न पहुंचे। और इस तरह से अपनी फसल को आप सही तरीके से देख रेख करेंगे, सही तरीके से इसमें जैविक या रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल जो है किसान भाइयों बहुत ही अच्छे होंगे और इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। और अब जो है किसान भाइयों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार और विषय है पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ।
1: भाइयों आज हमारे साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। कुछ ऐसे पशु जिनको पालने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है उनकी बीमारियों से संबंधित बातें करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि ये पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड क्या है।
2: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उन पशुपालकों के लिए है जो पशुपालक अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को ठीक से भोजन नहीं करा पाते हैं या बीमा नहीं करा पाते हैं, या अपना घर सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की एक योजना आई है कि वो जो है इसको 7% इंटरेस्ट है, जिसमें 3% इंटरेस्ट का भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 3% झारखंड सरकार वहन करेगी। अंतिम में 1% मात्र ही इंटरेस्ट जो है वो पशुपालक देंगे। इससे किसान पशुपालकों को ये फायदा होगा कि अगर वो गाय रखे हुए हैं तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति गाय कर करके ये ऋण मुहैया कराई जाएगी। वो 3 महीने तक गाय को खाना खिलाने के बाद उससे दूध उत्पादन बढ़ेगी और उससे आमदनी करके इसको 10 महीने के अंदर अगर वो चुका देते हैं तो उन्हें मात्र 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% झारखंड सरकार देगी, 3% भारत सरकार देगी। इस तरह से हरेक जिले में गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिलों में योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के लिए। इस तरह से पशुपालक चाहें तो जो मुर्गी रखे हुए हैं वो भी, खास करके मांस वाली मुर्गी रखे हुए हैं, तो एक लॉट निकालने में करीब करीब 500 मुर्गियों को निकालने का खर्च 60,000 रुपये होता है, तो उन्हें 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोई पशुपालक अगर 400 अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं तो उनके लिए खर्च करीब 1.5 लाख रुपये आते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता ऋण राशि इससे मुहैया करा जा सकती है। इसी तरह से 4 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 25,000, और अगर 10 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 50,000 रुपये, और शुकर अगर रखे हुए हैं 4 मादा शुकर 1 नर शुकर तो उन्हें 50,000 रुपया, 1 गाय या भैंस पर 20,000 रुपये, 5 गाय पर करीब आपको 1 लाख रुपये, और 10 गाय या भैंस है तो आपको 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जा सकती है।
1: और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसे?
2: इसकी भुगतान की प्रक्रिया है कि

0: आप 10 महीने के अंदर अगर इस लोन को और उसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं, तो जो आपका किसान क्रेडिट का लिमिट है, जो भी 25,000 किसी के लिए है या 50,000 रुपये
1: जो
0: है,
1: भी
0: तो
1: उन्होंने निर्धारित किया है।
0: निर्धारित किया है, तो अगर सही उनका साख बना रहेगा तो अगली बार जो है उससे ज़्यादा रकम वो निकालेंगे और उससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: और इसमें किसान जो हैं या फिर जो पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनका क्या कवरेज किया जाता
0: किसान को अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा, और जिस बैंक में उनका खाता है,
1: है?
0: खास करके जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपना खाता रखें, और उसका बचत खाता का फोटो कॉपी, और जो आपका शेड है, गाय शेड हो सकता है, बकरी शेड हो सकता है, या शुकर शेड हो, मांस वाली मुर्गी के लिए मुर्गी शेड हो, उसके साथ अपना एक फोटोग्राफ्स की आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, गौशाला जिस पर बनाया हुआ है उस जमीन का रसीद अगर लगा कर करके किसान भाई वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर लगा देते हैं, तो उन्हें वो बैंक के द्वारा एक आवेदन लगभग सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास 1 9 पेज का आवेदन उपलब्ध है। उस आवेदन पत्र में भर करके इतने कागजात लगा करके वो अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा ये संकलित आवेदनों को जिला के जो LDM लीड डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनके पास ये प्रत्येक शुक्रवार को ये आवेदन दिया जाता है, और 15 दिनों के अंदर बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वो किन कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में वो LDM को सूचना देंगे, और वो LDM के द्वारा वो सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को बताएंगे कि आपके इतने आवेदन पर जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन्हें आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है।
1: जी
0: इस तरह से उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा, और इस पैसे को खर्च करने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपने ढंग अपने हिसाब से खर्च करेंगे, और जब उससे लाभ होगा तो 10 महीने के अंदर उस पैसे को जो सूद निर्धारित है उसके साथ जमा कर देंगे, तो उससे उनकी साख बनी रहेगी और किसान भाइयों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता
1: मिलता रहेगा।
0: रहेगा।
1: जी, और किसानों का क्या कवरेज दिया जाता है जैसे उनके एक्सीडेंटल केस वगैरह?
0: एक्सीडेंटल केस के लिए नहीं है ये, जो योजना हम उपलब्ध करा रहे हैं इसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को भोजन कराने के साथ, पशुओं की चिकित्सा कराने के लिए, अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए ये पैसा दी जाती है। इससे फायदा ये होगा कि अगर बीमा कराए हुए हैं अपने पशुओं का और उनकी मृत्यु होती है तो संबंधित बीमा कंपनी उन्हें इस पैसे का भुगतान करेगी। जैसे सपोज करिए कि कोई गाय 50,000 रुपये के इंश्योरेंस है और वो गाय बीमार है, उन्होंने पशु चिकित्सक से इलाज करवाया फिर भी गाय मर गई, तो उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने बीमा कंपनी को सूचना दें और उस डॉक्टर को सूचना दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस कंपनी को जमा कर दें, वो कंपनी जो है इन्हें जो बीमा की रकम है उनके खाते में हस्तांतरित कर देगी।
1: अब हम आते हैं पशुओं के टीकाकरण से संबंधित बातों पर। बहुत सी कुछ खास बीमारियां भी हैं जो हमारे जो पशुधन हैं उनको प्रभावित करती हैं बीमारियां।
0: बिल्कुल सही है आपने कहा कि पशुपालक भाइयों को जो बड़े पशु रखे हुए हैं गाय या भैंस, उनमें 3 बीमारियां प्रमुख रूप से है। एक जो हमारे किसान भाई जानते हैं गलगटिया, दूसरा टंगर फुलवा और तीसरा डकहा कहते हैं।
1: अच्छा
0: और जब भी आप टीका लगवाएंगे तो 14 दिन के बाद जो पशु इम्यूनाइज हो जाएंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालक भाइयों के लिए है PPR नाम की बीमारी, जिसमें कि बकरियों में सर्दी हो जाती है, जबड़े में घाव हो जाएगा और आँख से आंसू आएगा, फिर पतला दस्त होता है, बकरियाँ मरने लगती हैं, तो इन्हें PPR कहते हैं। इस PPR बीमारी का जो है टीका साल में एक बार कराना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम इंट्रोटॉक्सिमिया है, इसमें बकरियाँ कुछ मौका नहीं देती है, पता भी नहीं चलता है, ऑल ऑफ सडन बकरियाँ मरने लगती हैं।
1: अच्छा
0: तो इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगभग सभी जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान भाई अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी और नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, साथ में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे संपर्क करके वो इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन दिलवा सकते हैं। और PPR वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। 100 डोज 100 बकरियों की वैक्सीन का कीमत बाजार में लगभग 450 रुपये है। पशुपालक भाई उसे खरीद कर करके अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके साथ ही वैसे पशुपालक जो शुकर पालन किए हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने शुकरों के लिए, उनमें शुकर ज्वर नाम का एक बीमारी होती है, उस बीमारी में शुकर जो है तेज बुखार होगा, खाने में अरुचि होगी, गंदा दस्त होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चलने में डगमगाहट रहती है, शरीर पर लाल पीले रंग के धब्बे निकल आते हैं, और ये शुकर जो है 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में

0: पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बचाने के लिए सुकर ज्वर का अंग्रेजी में स्वाइन फीवर कहते हैं, आप झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ प्रखंडों में स्वाइन फीवर टीका उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से वो टीका प्राप्त कर लगवाएं, या बाजार में जो है ये टीका उपलब्ध है, आप अपने नज़दीकी जो भी दवा दुकान है वहाँ पर आप बोलें कि स्वाइन फीवर या सुकर ज्वर के हमको टीका चाहिए, तो 10 पशुओं का एक साथ टीका आता है जिसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 700 रुपये। तो आपके पास अगर 10 पशु हैं या नहीं हैं तो आप आपस में मिल करके 10 पशु के लिए टीका एक साथ लें और 10ों पशु में टीका लगा दें, तो आपको ये सुकर जो बहुत जल्दी मर जाते हैं उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी और वो 1 साल तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी, सुकर में खुरहा चपका का वैक्सीन भी साल में 2 बार लगवाना चाहिए। अगर ये 2 टीके हमारे सुकर पशुपालक लगाते हैं तो उनके सुकर स्वस्थ रहेंगे और इससे उनको मुनाफा हो।
1: और कोई ऐसी बातें जो छूट रही हो?
0: इसी तरह से मुर्गी पालकों से अनुरोध है कि जो मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय को, तो उन्हें चाहिए कि जब भी देसी मुर्गी रखें तो कम से कम रानीखेत का जो 3 टीका है वो जरूर दिलवाएं। जो टुनकी से आप लोग परिचित हैं उसमें भी अकस्मात मुर्गियां मरने लगती हैं, उसमें आप चाहिए कि रानीखेत का पहला टीका का नाम F1 स्ट्रेन है जो कि हम लोग 4 से 10 दिनों के अंदर आँख में या नाक में एक एक बूंद देते हैं। दूसरी जो है दवा वो 21 दिन पर है, R2B वैक्सीन, उसे पानी में घोल देते हैं, सुबह तक पानी नहीं पिलाते हैं, दोपहर में पानी पर छोड़ते हैं दवा मिली हुई पानी में, तो मुर्गियां पानी पी लेती हैं, उस तरह से दूसरा खुराक उनका हो जाता है। और तीसरी जो सुई है वो लसोटा, लसोटा जो है उनको सभी को हम 1-1 ml की सुई आती है जो प्रत्येक मुर्गी को देना होता है। दूसरा, उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन 2 महीने पर एक बार दी जानी है। अगर इतना पशुपालक भाई अपने मुर्गी पालकों के लिए इतनी वैक्सीन का इंतजाम कर लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें अपने व्यवसाय में सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़े पैसे, क्योंकि वैक्सीन का दाम जो है बहुत कम होता है, आप देखेंगे तो मुर्गियों में ये 20 से 25 पैसे हैं, गायों में जो है वो 10 रुपये 15 रुपये आ रहा है। खुरहा चपका का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, 30-35 रुपये। सुकर का वैक्सीन जो है एक का बाजार से खरीदेंगे तो 70 रुपये, लेकिन सरकार के यहाँ से वैक्सीन आप प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क ही ये सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारियाँ साझा की, पशुओं की बीमारियाँ से बचाव की जानकारियाँ साझा की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से लिखी भेंटवार्ता, विषय था पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। अब दोस्तों माफ कीजिएगा, आइए किसान भाइयों अब हम आपसे बातें करते हैं आज की नसीहत में, मेढ़ों पर वृक्षारोपण पर। जी हाँ किसान भाइयों, खेतों और बागवानी में मेढ़ पर वृक्षारोपण करना एक सच पूछिए तो बेहद फायदेमंद और वैज्ञानिक तरीका है। खेत के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बनाई गई मिट्टी की सीमा या दीवार को मेड़ कहा जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो दोस्तों इस खाली जगह का उपयोग पेड़ लगाने के लिए करने से किसानों की आय दोगुनी होती है और पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। तो अब इसी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया,

0: मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
3: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
4: कंडोम,
3: गर्भ निरोधक गोलियां,
5: खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
6: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
7: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
6: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
7: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
6: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाएं स्वास्थ्य जानकारी।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने 143 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री को बड़गाई जमीन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने 21 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश, मिली वर्चुअली जुड़ने की छूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री ने उठाई राज्य के हितों की आवाज। खनन सेस अधिकार और जीएसटी क्षतिपूर्ति की बहाली का किया आग्रह। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कल सिमडेगा के पैतृक गांव बगडांड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इधर राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विभिन्न विभागों के 143 सफल युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है मोटे अनाजों के उत्पादन, उपभोग और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और किसानों की आजीविका को मजबूत करने में केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। 1 फरवरी 2023 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य मड़ुआ, ज्वार और बाजरा जैसे पोषक अनाजों को बढ़ावा देना है। योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
1: मिलेट एक प्रकार से एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से एनवायरनमेंट की

0: की अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि एक स्वस्थ भारत से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। स्त्री अन्न जिसे हम लोग भूल चुके थे, इसे उगाने में ही उतनी ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है और हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं मोदी जी का।
1: स्पष्ट है कि कम लागत और प्रचुर पोषण वाली ये श्री अन्न योजना रामगढ़ सहित पूरे राज्य के सुदूर गाँव में स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बना रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
2: रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाई जमीन मामले में 21 सितंबर शाम 4 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। व्यस्तता के कारण आज पेश न होने पर कोर्ट ने उन्हें वर्चुअली जुड़ने की छूट के साथ यह मोहलत दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए पिछड़े राज्यों को विशेष वित्तीय सहयोग मिलना अनिवार्य है।
3: विगत तो एक वर्षों के अंदर जो केंद्र की नीतियां रही हैं, खासकर आर्थिक नीतियां, उसे झारखंड को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जीएसटी रेस्टलाइजेशन में 4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष झारखंड को नुकसान रहा है और अभी एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट से वो राशि अब हम शेष के रूप में नहीं ले सकते।
2: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के सभी विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित किए गए हैं। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की अधिसूचना के अनुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास तथा कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग अब मुख्यमंत्री संभालेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ आज झामुमो ने राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चतरा, खूंटी और कोडरमा सहित विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर एक्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है।
4: तो विषय के एमएमडीआर एक्ट जिसके झारखंड सरकार विरोध कर रही है, कि एमएमडीआर एक्ट जो है भारत सरकार ने पार्लियामेंट से बिल पारित किया और राष्ट्रपति का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया, यानी कानून बन वो झारखंड के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए होगा।
2: राज्य के पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने का निर्णय लिया गया है। कल सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगडाण में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की पूर्व मंत्री दिवंगत विमला प्रधान के रांची स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
5: मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो विधायक हैं, मंत्री हैं। अगर मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगता है कि आम लोगों के साथ भी उनका जो व्यवहार रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत दुखद और मर्माहत करने वाला ये घटना आज हम लोग देख रहे हैं। असामयिक निधन सभी को पीड़ा देता है और आज इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ हम हैं।
2: राज्य के 28 सदस्यीय तलवारबाजी टीम आज जम्मू के लिए रवाना हो गई। यह टीम आगामी 23 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाली चाइल्ड अंडर 10 और मिनी अंडर 12 नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और

0: बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने 143 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री को बड़गांई जमीन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने 21 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश, मिली वर्चुअली जुड़ने की छूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री ने उठाई राज्य के हितों की आवाज। खनन सेस अधिकार और जीएसटी क्षतिपूर्ति की बहाली का किया आग्रह। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कल सिमडेगा के पैतृक गांव बगडांड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
11: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: क्षेत्र भ्रमण के दौरान लातेहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया का पक्षधर है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि
2: हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से नौजवानों को ठगने का काम तो किया ही था, लेकिन जेपीएससी में जेएससी में और नियुक्ति घोटाला के तार सत्ताधारी दलों के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनके मंत्री और उनके कई विधायक इस मामले में दोषी हैं।
1: लातेहार जिला पुलिस ने खानाबदोश परिवार के चार चोरों को 1,07,000 रुपए नगद एवं चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरोह का खुलासा करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि यह गिरोह दिन भर सामान बेचने के नाम पर सुने घरों की रेकी करता है और रात में चोरी की घटना को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि
3: विगत डेढ़ महीने में जो भी चोरी घटनाएं आसपास के क्षेत्र में हुई है उनमें उनकी संख्या रही है और मुख्यतः ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं।
1: एसआईआर के दौरान फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं को नाम हटाने का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया है। इसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस मामले पर झामुमो के राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा कि
4: एक मामला बाजकुंभ का आया है जिसमें लगभग 140 लोगों का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भर के और कुछ लोगों के द्वारा उसको भेजा गया बीएलओ के पास। बीएलओ ने इनकार किया उस पर सिग्नेचर करने से।
1: इस मामले पर प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी

0: दिनेश कुमार ने कहा कि
1: इसमें दुविधा की कोई बात नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 प्रकार का दस्तावेज का सूची दिया गया है जो सभी एआरओ के पास है, ईआरओ के पास है, सभी बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो उनके पास उपलब्ध है वो बीएलओ को दें और अपना नाम जुड़वाएं, उसमें कोई दिक्कत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस पर सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम गांव में भी चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि
2: नरेंद्र मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद हमारे देश में ऐसे कई निर्णय लिए गए, कई ऐसे स्कीम्स को पास किया गया जिससे भारत में आम आदमी की जिंदगी में काफी सुधार आया है।
0: राष्ट्रीय जनता दल की लातेहार जिला कमेटी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। लातेहार जिले के बरवाडी में अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में केंद्रीय विद्यालय संचालित होने लगेगा। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यहां केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग पिछले एक दशक से की जा रही थी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
3: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे डाल्टन, माफ कीजिएगा, राज्य केंद्र से हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गीत एवं गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि। आज के फनकार हैं मेहंदी।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि। आज के फनकार थे मेहंदी हसन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। आज का विषय है पौधों में परिसंचरण क्रिया। इस विषय में आपको बताएंगी प्रीति कुमारी।
1: श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे कार्यक्रम विज्ञान जगत अपनी रेडियो दोस्त प्रीति के साथ। श्रोताओ, आज हम आपको बता रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस लिए, तो आज हम बात कर रहे हैं पौधों में परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। आखिर जब जो हम पानी पौधों में डालते हैं वो पत्तियों तक कैसे पहुंचती है, आखिर कोई ना कोई विधि तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से प्रकाश और संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आज बात इसी के विषय में। जीव शरीर में विभिन्न पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित जल यदि पत्तियों तक नहीं पहुँचे तो प्रकाश और संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए पौधों में जड़ के द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो क्रिया होती है ये बहुत इसकी बहुत सारी विधियां होती है। इसी के विषय में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। इसके अगर विधि की बात करें तो पहली विधि होती है विषरण यानी कि डिफ्यूज़न। किसी गैस, तरल या ठोस के अणु या आयन अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अगर गति करते हैं तो इस क्रिया को विषरण कहते हैं। यह क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक कि किसी पदार्थ के अणु अमुक स्थान में समान रूप से न फैल जाएं। अब बारी आती है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की। परासरण एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें विसरण के अणु का विसरण बिना रोक टोक होता है और विसरित होने वाले अणु एक दूसरे से सीधे संपर्क में रहते हैं। इसके विपरीत शर्करा या नमक के घोल व अंडे को जो अंडे की जो जर्दी होती है या सुअर या बकरे के आशय या पार्चमेंट पेपर आदि किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करने पर पानी शर्करा के घोल यानी कि कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर विसरित होने लगता है। विसरण की इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और ये भी दो तरह से होता है, एक होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बहिःपरासरण। यदि कोशिकाओं को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखें तो जल कोशिकाओं से बाहर आने लगते हैं, इसे कहते हैं बहिःपरासरण। और कोशिकाओं को कम सांद्रता वाले विलयन में रखें तो जल कोशिकाओं में प्रवेश करने लगते हैं, इसे कहते हैं अंतःपरासरण। अब हम बात करते हैं स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर की। अंतःपरासरण के कारण कोशिका में जल के द्वारा कोशिका भित्तियों पर डाले जाने वाले दाब स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर कहलाता है, जिसके कारण कोशिकाएं स्फीति या तनी हुई अवस्था में रहती हैं। स्फीति दाब के साथ साथ ही इसके सम व विपरीत एक दाब कोशिका भित्ति के द्वारा भी उत्पन्न होती है, जिसे भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर भी कहा जाता है। एक विधि होती है सक्शन विधि यानी कि चूषण विधि। इस विषरण दाब न्यूनता भी कहा जाता है इसे। और इस किसी भी विलयन में विषरण दाब के द्वारा उसके शुद्ध विलायक के विषरण दाब का अंतर उस विलयन के विषरण दाब न्यूनता या चूषण के दाब का माप होता है, इसे ही कि इसे जल की विभक्तता कहा जाता है। अब बारी आती है अंतर शोषण की यानी कि इम्बिबिशन। विषरण एवं परासरण की भांति अंतर शोषण भी एक भौतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा शुष्क पदार्थ जल का शोषण करके फूल जाते हैं, जैसे कपास के रेशे, बीज, लकड़ी का बुरादा आदि ऐसे ही पदार्थ है जो अंतर शोषण के द्वारा जल सोखते हैं। पादप कोशिकाओं में प्राथमिक एवं द्वितीयक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिन पदार्थों की बनी होती है। वास्तव में जलप्रिय कोलाइड है यह, और इसी कारण पानी की काफ़ी मात्रा का अंतर शोषण करते हैं ये। अब हम बात करते हैं अवशोषण की, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बारे में। पौधों की जड़ों के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, और पौधे की मुख्य जड़ व इनकी शाखाएं भूमि के अंदर तक जाल सा फैलाए रखती है। भूमि में मूल तंत्र की लंबाई प्रायः कई मीटर तक होती है। पौधे इस विस्तृत मूल तंत्र की सहायता से भूमि से अपने लिए आवश्यक जल व खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं। पानी व खनिज लवणों की आवश्यक जो जड़ों का जो अवशोषण होता है उसे अग्रस्त भागों के द्वारा होता है, और जड़ों के सिरों पर मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का बना हुआ लगभग 1 mm लंबा वृद्धि बिंदु होता है। इसके ठीक ऊपर की ओर दीर्घीकरण प्रदेश होता है। इन दोनों प्रदेशों में जल का अवशोषण नहीं के बराबर होता है। दीर्घीकरण प्रदेश के ठीक ऊपर 1 से 4 mm लंबा मूल रोम प्रदेश होता है। जल की अधिकांश मात्रा का अवशोषण इसी प्रदेश में होता है। इससे ऊपर की भित्तियों में सुबेरीन और क्यूटीन के जमा होने के कारण जल का अवशोषण नहीं हो सकता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच कोशिका जल के निकट संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक मूल रोम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है, जिससे कोशिका रस में खनिज लवण, सरकड़ा व कार्बनिक अम्ल घुलित अवस्था में रहते हैं। भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के परासरण दाब से अधिक होता है। यह दोनों अर्धपारगमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, और पैक्टिन पदार्थ की उपस्थिति के कारण यह बड़ी मात्रा में जल को सोख लेती है। कोशिका भित्ति के द्वारा जल का अंतःशोषण और जल के अवशोषण का प्रथम पद होता है। यहाँ से जल कोशिका रस से उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर मूल रोम में प्रवेश करते हैं। इसके बाद उच्च वर्गीय पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम उत्तक नलिकाओं की सहायता से जड़ के द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण इत्यादि पौधों की तने एवं पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम भी जाइलम की तरह एक प्रकार का जटिल उत्तक है। यह मुख्य रूप से पत्तियों से बना भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम आपको बताते हैं चालन यानी कंडक्शन के बारे में। मूल रोमों के द्वारा अवशोषण के बाद जल धीरे धीरे कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पहुंचता है, और अंत में एंडोडर्मिस व परिरंभ से पारित होकर जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। मूल रोमों के द्वारा अवशोषण के बाद अवशोषित जल के जाइलम वेसल्स की ओर चालन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। जल मूल रोम की अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से पारित होकर मूल रोम में प्रविष्ट होता है, जिससे कि चूषण दाब कम हो जाता है। परासरण दाब के कम होने के साथ साथ मूल रोम की स्फीति दाब बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप मूल रोम का चूषण दाब शून्य हो जाता है। इस दशा में मूल रोम के पास कॉर्टेक्स कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए इसका चूषण दाब भी मूल रोम के चूषण दाब से कम हो जाता है। अब इसका जल परासरण के द्वारा अगली कोशिका में प्रवेश करता है। जल के एकत्रित होने के कारण इसका चूषण दाब अंदर की कोशिकाओं के चूषण दाब से कम हो जाता है। इसके साथ ही स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर बढ़ता जाता है और अंतिम क्षण में यह पराशर दाब के बराबर हो जाता है और इस प्रकार जल का प्रसार अंदर की कोशिकाओं में होने लगता है और यह क्रम निरंतर होता रहता है। जल कॉर्टेक्स की एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक और एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में एकत्रित होने लगता है। प्रोटोप्लाज्म वेसल्स के ठीक सामने की एंडोडर्मिस कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं जिन्हें मार्ग कोशिका कहते हैं। जल का प्रवाह इन कोशिकाओं से होकर परिरंभ कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके बाद जल का प्रवाह प्रोटोजाइलम में होता है और इस प्रकार मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है जिससे कि जाइलम वेसल्स की ओर एक प्रकार का चूषण दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा जल भूमि की मृदा कणों में जाइलम में प्रवाहित होने लगता है। जड़ों में जल के चालन के समय कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस व परिरंभ की कोशिकाएं सामूहिक रूप से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती हैं। अब हम बात करते हैं जल स्थानांतरण की। तो जल तो पहुंच गया जड़ों से लेकर के पत्तियों तक, लेकिन इसका स्थानांतरण आखिर होता कैसे है? मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जल का जड़ों से पौधों के अन्य उपस्थित भागों में स्थानांतरण को जल स्थानांतरण कहते हैं। यह क्रियाविधि भी काफ़ी जटिल होती है। इसमें भी कई सिद्धांत हैं, जैविक सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत और भौतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत कोशिकत्व सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन तनाव व संसर्जन बल का सिद्धांत मुख्य होता है। मूल दाब तथा कोशिकत्व के द्वारा जड़ों से जल का कुछ दूरी तक ही स्थानांतरण संभव हो पाता। जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के बहुत पतली कोशिकाओं के समान संरचनाएं होती है जिसमें जल मूल दाब के प्रभाव से कुछ ही दूरी तक चढ़ पाता। जल के ऊपर की दिशा में चालन हेतु दो प्रकार के बलों असंजम बल और विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होता है और होता है एक संसर्जन बल और समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण का बल होता है। बलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसर्जन बल के द्वारा जल के अणु परस्पर आकर्षित हो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिससे कि जाइलम वाहिकाओं व जल की अणुओं के मध्य उपस्थित असंजन बल के द्वारा खींच कर रखा जाता है। साथ ही जल के वाष्पीकरण के द्वारा इस अटूट जल श्रृंखला हेतु तनाव उत्पन्न होता है जिससे कि ये जल श्रृंखला जाइलम व जल अणुओं के मध्य उपस्थित असंजन बल के द्वारा ऊपर की ओर खींचती है। इस प्रकार जल का पौधों के ऊपरी भागों में चालन होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न यह तनाव लगभग 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर वर्ग मीटर का होता है जिससे कि यह श्रृंखला 105 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकती है। अब बारी आती है भोजन का परिचालन की। उच्च श्रेणी के पौधों का पर्ण में बनने वाला कार्बोहाइड्रेट फ्लोएम के द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है और इसे भोजन का परिचालन कहते हैं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में इतना ही। आज मैंने आपको भोजन पौधों के मतलब पौधे जो जल खनिज लवण जो ग्रहण करते हैं जब हम पानी डालते हैं तो उनकी पत्तियों तक ये पानी कैसे पहुंचता है, आज मैंने कोशिश की है इसी विधि को आपको बताने की। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ रोचक तथ्यों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को कार्यक्रम विज्ञान जगत से इजाज़त दे। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र।

चित्रपट से सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है, फिल्म है जीन्स, आवाज उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है, गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत दिया है AR।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दस लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे फिल्म गुप्त का गाना, आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की थी, गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था वीजू शाह ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

अभी आप सुन रहे थे विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन

0: के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: कि हमारे पास 2 मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर

0: वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
1: I think close to 8 cargo planes have arrived.
2: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. the headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. Two-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
4: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
3: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
4: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
3: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometres of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. Railways Ministry said the approved project will extend coverage 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on the Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. It will facilitate smoother movement of road traffic, reducing interference with railway operations. Railways has also given the nod to the provision of electronic interlocking at seven

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प

0: और शुरू होता है ललित का, मध्यम से आठ लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मशाल फिल्म के इस गीत को सुनकर आपको चार फुटपाथी आवारा लड़के याद जरूर आए होंगे, जिसमें अनिल कपूर भी थे और एक थे गुलशन ग्रोवर।

गुलशन ग्रोवर का नाम जब भी लिया जाता है तो अक्सर बैडमैन की उनकी इमेज को ज्यादा उभारा जाता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नया गेटअप दिया है।

में

गुलशन ग्रोवर मध्यम वर्गीय परिवार से और उनका बचपन दिल्ली में बीता। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक्टिंग का शौक उन्हें लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनके इस शौक को हवा मिली और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कई नाटकों में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुलशन ग्रोवर मुंबई की ओर अपना रुख कर चुके थे और यहां आकर उन्होंने फिल्मी ख्वाबों को फिल्मों में अभिनय के जरिए हकीकत में बदलने की ठान ली।

मुंबई में एक्टिंग स्कूल में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और जब तक इंडस्ट्री में काम न मिला तब तक अन्य छात्रों को बतौर टीचर उन्होंने एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके स्टूडेंट में उस समय संजय दत्त भी थे। जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी लॉन्च की थी तो उसने संजय दत्त के दोस्त की भूमिका के लिए उन्होंने गुलशन ग्रोवर को ही सिलेक्ट किया था, यानी गुलशन ग्रोवर की पहली फिल्म थी रॉकी।

गुलशन ग्रोवर शुरू ही से अपनी योग्यता को जानते थे, इसलिए उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए खुद को तैयार किया। हम 5 में उनकी एक्टिंग देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार के लिए गुलशन ग्रोवर को रिकमेंड किया और बाद में सिप्पी फिल्म्स की

0: गुलशन ग्रोवर ने फिल्मकार महेश भट्ट के साथ भी काम किया। फिल्म अर्थ में गुलशन को महेश जी ने छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन बाद की फिल्मों में गुलशन के भीतर के कलाकार को उन्होंने नए अंदाज में पेश किया। इसकी मिसाल थी फिल्म सर। यही नहीं, सुभाष घई ने भी गुलशन ग्रोवर को मौका दिया और पर्दे पर एक अनोखा बैटमैन पेश किया।
1: करे हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम।

کرتا نہیں کوئی مجھے سلام، لیتا نہیں کوئی میرا نام، دس کا

यूं तो गुलशन ग्रोवर ने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में काम किया, जिसमें खास हैं साउथ की फिल्में। लेकिन बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मन, यूके और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया है। फिल्म जंगल बुक ने भी गुलशन ग्रोवर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। फिल्म मारी गोल्ड, जिसे मेरी गोल्ड भी कहा जाता है, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उन्होंने एक नया किरदार पेश किया है। हालांकि सलमान के साथ गुलशन ग्रोवर ने चंद्रमुखी और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके पहले सईद जाफरी, कबीर बेदी और परसिस खंबाटा ने भी हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: दोस्तों, आपको याद होगा कि गुलशन ग्रोवर ने यूं तो कई फिल्मों में और भी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन सन 2006 में रिलीज गैंगस्टर, 2010 में रिलीज हुई फिल्में हैं नॉकआउट और प्लेबैक, 2011 में आई एम कलाम और 2012 में एजेंट विनोद में आपने उनका अभिनय जरूर देखा होगा। और फिल्म एजेंट विनोद के बाद भी गुलशन ग्रोवर की अभिनय यात्रा बदस्तूर जारी है। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्म राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा और यारियां फिल्मों में भी देखा होगा। ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने,
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़े ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओ नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। दोस्तों, कभी कभी कोई रात बस रात नहीं होती, उसमें चांद की रोशनी होती है, आसमान की खामोशी होती है और दिल में किसी की मीठी सी याद होती है। ऐसे ही पलों में जब कोई पुराना नगमा सुनाई देता है तो लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। चांद निकला तो कई यादें भी साथ आई, खामोश रात ने फिर कुछ बातें दोहराई। जिसे भूलने की कोशिश में गुजर गई उम्र, आज उसी की याद ने फिर नींद चुराई।

माँ यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि बच्ची की पूरी दुनिया होती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नज़र में हमेशा वही नन्हा सा बच्चा रहता है, जिसकी मुस्कान में उसकी खुशियाँ और उसकी सफलता में उसका गर्व छिपा है। कहते हैं माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसकी दुआओं से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। बच्चे की खुशी में ही उसकी दुनिया बसती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। और जब एक माँ अपने बेटे को प्यार से देखती है तो उसके लिए वह कभी चांद कभी सूरज, उसकी आँखों का तारा तो और उसके जीवन का की सबसे खूबसूरत उम्मीद भी वही है।

कभी किसी को देखकर दिल में अचानक एक ख्याल आता है, क्या सचमुच कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? और फिर वही शख्स धीरे धीरे हमारी कल्पनाओं का हिस्सा बन जाता है। ख्वाबों में जिसे देखा वो हकीकत बन गई, अनजानी सी कोई शख्सियत चाहत बन गई। सोचा भी ना था कि ऐसा कोई मिलेगा, और देखते ही देखते वही दिल की ज़रूरत बन गई। प्यार की खूबसूरती शायद यही है, इसे हमेशा शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। कभी एक नज़र काफ़ी होती है, और कभी किसी की मौजूदगी ही दिल की एक एहसास करा देती है कि शायद इसी इंसान का इंतजार था।

कभी किसी खास इंसान का इंतजार इतना गहरा होता है कि उसके आने की आहट भी दिल को खुशी से भर देती है, और जब वह सामने आता है तो लगता है जैसे साधारण सी शाम अचानक रोशनी से भर गई, जैसे आसमान का चांद उतरकर हमारी गली में आ गया हो। जिसका इंतजार था वह सामने आ गया, दिल के सूने आंगन में चांद उतर आया, नजरें मिली तो लगा कुछ कह रही है, खामोशियों ने भी जैसे प्यार का गीत गाया। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब किसी की एक झलक पूरी दुनिया की खूबसूरती बनकर गली में उतर कर आती है, और वो होता है चांद।

कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हर बार चांदनी रात के साथ फिर लौट आती है। कभी वही चांद देखकर जो दिल खुश हुआ करता था, वही चांद किसी की कमी का एहसास भी करा देती है। चांद फिर निकला मगर तुम नहीं आए, पुराने मौसम लौटे मगर वो दिन नहीं आए। रात ने फिर छेड़ी यादों की वही कहानी, हम मुस्कुराए भी तो आंखों में आंसू आए। मोहब्बत की कहानी में मिलना जितना खूबसूरत होता है, कभी कभी बिछड़ना भी दिल में ऐसी याद छोड़ जाता है जिसे समय भी मिटा नहीं पाता।

स्वागत है श्रोताओं, आप सबों का कार्यक्रम फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा में। मोहब्बत में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब दिल चाहता है कि पूरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए पर्दा हो जाए, पूरी दुनिया से ना कोई देखे ना कोई टोके, बस चांदनी रात हो, खामोश हवाएं हो और दो दिलों के बीच की अनकही बातें हों। रात चुप है, हवाएं भी खामोश हैं, दिल में मगर मोहब्बत के एहसास हैं। आज चांद भी जरा पर्दे में रह जाए, कुछ राज हैं जो सिर्फ दिल के पास हैं। कभी कभी प्यार के शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र, एक मुस्कान और एक शांत सी रात ही काफ़ी होती है।

चांद को देखकर अक्सर लोग उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, सितारों को देखकर अपनी ख्वाहिशें मांगते हैं, लेकिन दिल में छिपे प्यार का राज ये चांद और सितारे क्या जाने। किसी की याद में धड़कता हुआ दिल, किसी की एक झलक के लिए बेचैनी और किसी के साथ बिताए दो पल की खुशी, ये एहसास तो वही समझ सकता है जिसने सच में प्यार किया हो। चांद सितारे तो रात की रौनक है, दिल की दुनिया की मगर अपनी ही चमक है। किसी की याद जब दिल में उतर जाती है तो हर रात मोहब्बत की एक नई झलक है।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातें करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस वादे का नाम है जिसे वक्त बदलने पर भी दिल नहीं भूलता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां खुशी के साथ साथ मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का हौसला हो। वादा अगर दिल से किया है तो निभाना होगा, राह मुश्किल हो तो भी साथ चलना होगा। प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, कभी दूर रहकर भी रिश्ता।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीना ही नहीं चाहते, सहेज लेना चाहते हैं। जब कोई अपना पास हो, बातें खत्म होने का नाम ना ले और दिल कहे काश ये रात यहीं ठहर जाए, ये चांद यहीं रुक जाए, सुबह थोड़ी देर में आए। कुछ पल मिले हैं आज, इन्हें जाने न देंगे, दिल की इन खुशियों को यूं मिटने न देंगे। रात थोड़ी और ठहर जाए तो क्या बात है, आज चांद भी कहेंगे जरा धीरे चलना।

दोस्तों, बचपन की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है ना, जहाँ आसमान में चमकता चांद सिर्फ चांद नहीं होता, बल्कि हमारा अपना चंदा मामा होता है। बच्चों की कल्पना में चांद उनसे बातें करता है, सितारे उनके दोस्त बन जाते हैं और रात का आसमान एक खूबसूरत कहानी की किताब जैसा लगता है। माँ की गोद में लेटे हुए बच्चे जब आसमान की ओर देखते हैं तो उनकी आँखों में न जाने कितने सवाल और कितने सपने होते हैं। माँ भी प्यार से कहती है, देखो देखो वो रहा चंदा मामा। और बस बच्चे अपनी ही कल्पना, अपनी ही नई दुनिया में जाने क्या क्या सोचते हैं। और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत बच्चों के लिए।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनि, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, चाहे तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next